यार ये कब होगा, कब होगा कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो चाहे किसी भी कोर्स से जुड़ा हुआ हो, ये स्टडी मटेरियल फिल्मों की तरह, नरेशन की तरह हमें दिखा दिया जाए और बस उसके सामने क्विकली एग्जाम हो जाए, हम पास हो जाए और वो सीन ना, मतलब बस फटाफट निकल जाए। सो मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। तो देखिए करियर में फिल्मों की एंट्री कब होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर एंट्री हो भी गई तो उसमें आपको अक्षय कुमार जरूर नजर आने वाले हैं। सो हेलो हाय, मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एनीवेज अगर मैं बात करूं अक्षय कुमार की, तो वो विद्या बालन के साथ कैसे नजर आएंगे ये तो वक्त बताएगा। और ऊपर से इसमें टिगड़ी भी नजर आ रही है डायरेक्टर अनीस बज़मी की। हाँ जी, ये तीनों ही वंस अगेन रीयूनाइट होने वाले हैं, या फिर आप समझ लीजिए एक कॉमेडी मूवी जो है ना वो 4th of December 2026 को मार्केट में उतरने वाली है। हाँ जी, वंस अगेन अक्षय कुमार जो है वो ऑन टोज आ चुके हैं एंड ही इज ट्राइंग कि भाई एक ना एक तो सुपरस्टार लेवल वाली मूवी निकल आए और उनका ये साल अच्छा खासा निकल कर आए। मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ हैं। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूं मैं जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: We are the sounds of the streets.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: अच्छा चलिए गेस कीजिए उस एक्टर का नाम जिसने इंडिया में अयोध्या मंदिर बनने के साथ ही एक बड़ा सा लैंड जो है वो खरीद लिया था इन्वेस्टमेंट पर्पस से। बताइए बताइए वो कौन सा एक्टर है। ऑफकोर्स सबसे पहले एक्टर थे अमिताभ बच्चन साहब जिन्होंने एक प्लॉट ऑफ लैंड लेने के साथ वहां के रियल इस्टेट को और ज्यादा बूम

कर दिया था, पर बाय द टाइम अब इस तरह के इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं रहे हैं बल्कि एक पॉपुलैरिटी का तरीका बन चुके हैं। सो मीनवाइल अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो रणबीर कपूर, जिनके लिए कहा जा रहा था कि भाई सुना है अयोध्या मूवी में 75 एकड़ का लैंड ले लिया है, वो भी 3.31 करोड़ का। हाँ हाँ, इस बात पर 90% एश्योरेंस दिया जा रहा था लेकिन अब 100% एश्योरेंस हो चुका है। हाँ जी, और इसके पीछे की वजह इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ये है कि बहुत जल्द रणबीर कपूर की मूवी रामायण रिलीज होने वाली है और वो जिस तरह से भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे और वो किरदार अगर अयोध्या की भूमि से जुड़ा हुआ नजर नहीं आया तो क्या ही फायदा। आरजे अनुपम, मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: सोचो सोचो, आप पूरा का पूरा डिनर जो है ना वो खाकर आ गए हैं, आप सैटिस्फाइड हो चुके हैं, एंड जब आपने बिल देखा तो उसमें बहुत सारी डिशेस जो आपकी फेवरेट है वो सिर्फ आपको 25++ डॉलर में मिल गई। हाउ पॉसिबल? ऑफ कोर्स पॉसिबल है इन सिंगापुर ओनली। हेलो हाय, मैं आरजे अनुप्रमसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड आपको पता है ना रैफल्स सिटी सेंटर में सबसे खास रेस्टोरेंट कौन सा है? That is शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट। ऑफ कोर्स यार, हर ओकेजन पर हम अपने सेलिब्रेशन के लिए इनके यहाँ लंच डिनर या ब्रंच में चले जाते हैं, लेकिन अब मौका आ चुका है कि शाही महारानी के सेलिब्रेशन में हम चले जाएं और हम अपना ही फायदा करके आ जाएं, राइट? शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट को 25 साल हो चुके हैं इन सिंगापुर। एनीवेज, ऑन दिस ओकेजन आप इनकी सिग्नेचर क्लासिक बहुत सारी डिशेस सिर्फ 25++ डॉलर में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपकी टेबल का बिल 100++ डॉलर आया तो आप अनलॉक कर लेंगे इस 25th एनिवर्सरी ऑफर में। मुर्गी टिक्का, तंदूरी चिकन, चिकन मक्खन वाला, शाही फिश अमृतसरी करी, पालक पनीर, शाही सब्जी सिजलर और भी बहुत सारी चीजें सिर्फ 25 डॉलर में, राइट? यू कॉट मी यार। सो इस सेलिब्रेशन का अगर आपको हिस्सा लेना है, आपको इतना बढ़िया खाना इस प्राइस पे एंजॉय करना है, 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना है, तो डेफिनेटली आप पहुंच सकते हैं रैफल सिटी सेंटर जहां पे है शाही महारानी रेस्टोरेंट। रिजर्वेशन के लिए www.shahimaharani.com विजिट कर लीजिए या कॉल कीजिए 6235884 पर। आरजे अनुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
1: Thank you to Shahi Maharani for the special treat.
2: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
3: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
2: Thank you.
4: Thank you.
3: Thank you.
1: Thank you. We love you.
5: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
6: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: भाई बड़े बड़े घरों में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इन बड़े घरों की बातें पहले घरों में रह जाती थी, लेकिन अब क्यों बाहर निकल कर आ रही है। मतलब मैं तो धीरे धीरे बोर होने लगी हूँ कि यार आपके घर की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। सिर्फ आप जिस फिल्म में काम करने वाले हैं, वहाँ आपकी किसी से बन रही है, नहीं बन रही है, आपके क्या प्लान्स हैं, ये मुझ तक पहुंचाओ, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन अंदर की बातें, हाँ अब देखो पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद है कि आमिर खान के घर में चलता क्या है, तो पब्लिक वो जानना भी चाह रही है। और आपके भी मन में चल रहा है कि नुपुर ऐसा क्या बताने वाली है। चलो बता देती हूँ, आमिर खान जो है वो तीसरी बार अपनी लाइफ में अपनी गर्लफ्रेंड कह लीजिए, आने वाले वक्त में हो सकता है वो शादी भी कर ले, समथिंग लाइक दैट, तो वो गौरी स्प्राट को कहीं ना कहीं डेट कर रहे हैं और इन्होंने ओपनली कन्फेस कर रखा है। अब आमिर खान के जो बेटे हैं जुनैद खान, उनका क्या कहना है कि देखो जब वो 7 साल के थे, बहुत छोटे थे, तभी उनकी मॉम के साथ आमिर खान का डिवोर्स हो गया था, तो इन्होंने अपनी लाइफ में चैलेंजेस बहुत पहले से देख लिए थे और ये बहुत जल्दी प्रैक्टिकल भी हो गए। लेकिन जो गौरी स्प्राट है उनके साथ इनकी ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है और ये गौरी को गौरी कह के ही बुलाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई नई माँ आई और आप उनको मॉम कह के बुलाने लगे, ना ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
3: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
1: लीजिए समर आ गया है, लेकर यादों का कारवां।
4: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, दैट टू विद अ हाइब्रिड मॉडल फॉर योर कन्वीनियंस। 12 आवर्स ट्रेनिंग पर लेवल, फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल फोकस सिलेबस ऑफर्ड फॉर 14 ईयर्स ओल्ड एंड अबव। Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर।
0: हाँ जी, तो बात यहाँ तक आ गई है कि अब लोग रियलिटी शोज में तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, लेकिन हाँ जो पॉडकास्ट शो है, जो टॉक शोज है, उसमें आकर अपने हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम कराकर अपने मन की बातें भी बोल जाते हैं और पब्लिक फिगर भी बन जाते हैं। सो हेलो, हाय, मैं आज पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एनीवेज, अगर कोई आपका इंटरव्यू लेगा किसी भी दिन, ओके, तो उसमें क्या क्या सवाल होंगे आज से ही सोच लो, क्योंकि जब वो मोमेंट आता है ना, तब याद नहीं आता है कि क्या बोले और क्या नहीं, है ना। सो आज यहाँ पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, रिसेंटली शाहिद कपूर एंड ईशान खट्टर की मॉम है नीलिमा, वो एक टॉक शो में नजर आई और उनसे सवाल पूछ लिया गया, भाई आपकी तो 3 बार शादी हुई, 3 बार डिवोर्स हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे। तो भाई उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी पैसों के लिए, जायदाद के लिए, ग्लैम के लिए शादी नहीं करी, मैं सिर्फ अच्छा इंसान ढूंढती थी और बाद में मुझे पता चलता था कि ना ना ना ना, वो अच्छा इंसान अच्छा था ही नहीं, और इनके साथ ऐसा 3 बार हो चुका है। आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि बॉलीवुड इनसाइड्स कुछ ऐसी ही चलती रहेंगी, सो डोंट गो एनीवेयर।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

एक गाना था ना, आया मौसम दोस्ती का। लेकिन अब एक नया गाना आने का वक्त आ चुका है और उसका नाम होना चाहिए आया मौसम मैंगोस का। भाई हर घर में एक मैंगो लवर होता है और एक मैंगो हेटर होता है। तो मैंगो हेट जो करता है ना, मुझे तो वो लोग ही पसंद नहीं। आई जस्ट लव मैंगोस। देखो हम आम लोगों को आम खाना बहुत ज्यादा पसंद है और इंडिया से जब से निकले हैं ना, तो वो एकदम वो होते हैं ना ऑथेंटिक आम जो होते हैं, अल्फांसोज होते हैं ना, उनकी क्रेविंग तो बीच बीच में लगती रहती है। लेकिन अब इंडिया से चल कर आ चुके हैं आम सिंगापुर तक। अगर आप पहुंचेंगे ggmartonline.com, जो कि आपका पर्सनली ग्रोसर पार्टनर है, जहां पे आपको अपनी ग्रोसरी ए टू जेड मिल जाएगी। प्लस चेरी ऑन द टॉप ये है कि देवगढ़ और रत्नागिरी के डायरेक्ट अल्फांसो मैंगोज $39 पर बॉक्स एंड $35 पर बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने क्विकली ऑर्डर किया तो विद इन अ वीक आपके दरवाजे पे पहुंच जाएंगे ये अल्फांसो। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल्स इनके ऊपर नहीं लगाए जाते, जैसे कैल्शियम कार्बाइड वगैरह। मतलब बहुत सारे लोग जो इंपोर्ट करवाते हैं ना, मैंगोस खराब ना हो जाए, क्वालिटी में थोड़ा सा डीग्रेड ना आ जाए, तो हार्मफुल केमिकल्स जो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं उनको लगाया जाता है। बट आपको इनके साथ एकदम टिपिकल ऑर्गेनिक मैंगोज मिलने वाले हैं विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स। सो क्विकली ggmartonline.com पे जाकर ऑर्डर कर दो। मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो आपके साथ है।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
0: You know what? ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में बहुत बहुत बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, फिर बहुत बहुत बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, और ये जो अप एंड डाउन्स होते हैं ना, इनमें आपके साथ कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, नो डाउट आपके पेरेंट्स होते हैं, राइट? सो हेलो, हाय, मैं आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड यू नो व्हाट, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए कि पूरी दुनिया में इकलौते आपके पेरेंट्स हैं जो सच में आपका भला चाहते हैं, उस दिन आप कह सकते हैं, प्राउडली कह सकते हैं कि आप ना मैच्योर हो चुके हैं, आपको दुनियादारी की अकल आ चुकी है। सो हेलो, हाय, मैं आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एनीवेज, मैं आपको बताना चाहूंगी, प्रियंका चोपड़ा हर बार हमको ऐसी बातें बोल के चली जाती हैं कि हम ही सोच में पड़ जाते हैं कि यार बंदी बिल्कुल सही बोल रही है, अरे बिल्कुल सही बोल रही है यार, इसने हमारे मन की बात बोल दी। हाँ, ऐसे थॉट्स आ जाते हैं। सो इस बार प्रियंका चोपड़ा ने क्या बोला है, आहा, कि भाई उन्होंने अपनी लाइफ में जो किया वो किया, लेकिन पीछे से जिसने धक्का दिया है, पीछे से जिसने इनको पॉजिटिवली पुश किया है कि करो करो, करती क्यों नहीं, तो वो है इनकी मॉम, राइट? इनकी मॉम ने हमेशा इनका साथ दिया है और आज तक इन्हें पुश करती हुई आ रही है कि देखो सुनो, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा। तो लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं जो चलती रहती हैं और आपको पुश करने वाला वो इंसान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। सुबह उठने के साथ आप कुछ भी कर लो लेकिन सोशल मीडिया ऑन करके मत देखो, बिकॉज अगर देख लिया ना तो यार आपका मूड खराब हो जाएगा, फिर आप घर से उसी मूड में निकलोगे, फिर ऑफिस में जाके गुस्सा निकालोगे, फिर बॉस का कुछ सुन लोगे, समथिंग लाइक दैट। वो फिर एक कंटिन्यूअसली पार्ट बन जाता है नेगेटिविटी का। सो हेलो हाय, मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और ऐसा सेलिब्रिटीज भी अब कहने लगे हैं, देखो जब उनके बारे में कुछ नेगेटिव आने लगती है ना चीजें, तब वो और ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो ये कन्फेशन कर लेते हैं कि नहीं, सोशल मीडिया जो है ना वो देखने की चीज नहीं है। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड बात करें अगर अमीषा पटेल की, तो अमीषा पटेल या तो पॉजिटिव बोलती है या हमेशा नेगेटिव बोलती है। और जब पॉजिटिविटी में आती है ना वो, तो वो बस उनके पास वार्डरोब में कितनी ब्रांड्स हैं उनकी बातें करती हैं, या फिर गदर मूवी के अगले पार्ट में क्या प्रोग्रेशन है उसकी बात करती हैं। लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव बोला है कि भाई सोशल मीडिया पर नेगेटिव पीआर मशीनरी सिस्टम चल रहा है, मतलब हर किसी के बारे में बुरा बोलने के लिए कोई ना कोई उस प्लेटफॉर्म को फीड कर रहा है, कहीं ना कहीं उसे अमाउंट पे किया जा रहा है कि तुम इस सेलिब्रिटी की इज्जत जितनी डाउन करोगे तुम्हें उतना अमाउंट मिलेगा। यू नो व्हाट, हर लूप होल आज के टाइम पर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन चुका है और ये उनमें से एक है। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा kg मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी।
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
4: क्या
5: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
4: वाजी क्या बात जी।
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

What chunka? ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। भाई साहब, बचपन में एक बात सुनी थी मैंने कि पूरी दुनिया में आपके साथ हम शक्ल होते हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है सोशल मीडिया की दुनिया में सच में होते हैं। बिकॉज दुनिया अब छोटी हो चुकी है सोशल मीडिया की वजह से, तो आपको अपने हमशक्ल मिलना और भी ज्यादा आसान हो गए हैं यार। सो हेलो हाई, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड जिस तरह से ऐश्वर्या राय, दिया मिर्जा एंड करीना कपूर, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, विराट कोहली और मतलब MS धोनी, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी स्टार्स हैं जिनके हमशक्ल सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। मतलब शाहरुख खान का भी हमशक्ल आपको मिल जाएगा तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा। तो धीरे धीरे से ये जो चेहरे हैं वो उभर उभर के सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हैं, जानबूझकर बना रहे हैं यार। मतलब यू वोंट बिलीव, जब कटरीना कैफ की मिलती जुलती शक्ल के साथ जरीन खान बॉलीवुड में आई थी, उनको कितना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, राइट? तो क्या आप भी ऐसे मिलते जुलते चेहरों वालों को देख चुके हैं ऑन सोशल मीडिया एंड यू स्टिल रिलाई ऑन दिस फैक्ट कि दुनिया में आपके जैसे साथ हम शक्ल घूम रहे हैं? देन डू कॉमेंट। एनीवेज, मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ बनी हुई थी, लेकिन अभी मेरे जाने का वक्त आ चुका है, राइट? मुलाकात होगी बहुत जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, आप लोगों का ख्याल रखिएगा, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट.

0: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
4: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
5: I love you, रसना।
4: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, Masti 90s mixtape with aapki 90s wali Antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Masti 24/7 Live.

वेलकम टू योर चिल जोन, मस्ती म्यूजिक कैफे, ओनली म्यूजिक, ओनली मस्ती।

0: नमस्कार सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: All music is loud. Some songs just sneak in.
1: What
0: makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
2: बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं।
0: छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट आउट।
5: अर्जुन आएंगे
0: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM onwards only on रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: हाय वेलकम नमस्ते, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ये वही वक्त है जिसका आपको था इंतजार। आपको क्या, मुझे भी इस वक्त का होता है इंतजार। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप, मैं हूं अंतरा आपके साथ। एंड साथ साथ हम लोग यहां पर बिल्कुल शुरू करते हैं वो शो जिसको हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया का पेंडोरा बॉक्स। मतलब इस बॉक्स में से मैजिकली कभी भी कुछ भी निकल सकता है, कभी बातें करते करते, कभी यूं ही रैंडम कुछ भी पिक करते हुए। बट ये 3 घंटे हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं ना। ये वही शो है जहां हम सिर्फ गाने नहीं सुनते हैं, हम पूरा जमाना रिवाइंड कर देते हैं। एंड ऑनेस्टली 90s को एक्सप्लेन करना कभी कभी बहुत ज्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फॉर मी 90s सिर्फ एक डेकेड नहीं था, एक फुल सेंसरी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था। ब्राइट कलर्स वाली शर्ट्स एंड ऑडियो कैसेट्स का रैक्स, VCR की ब्लिंकिंग लाइट, स्कूल बैग्स पे स्टिच्ड कार्टून के वो पैचेस, एंड हर वो चीज का साउंड अलग से। मेमोरी का ऐसा लग रहा है कंपार्टमेंट 90s के लिए अलग से बना हुआ है और उसी में ये सारी की सारी चीजें स्टोर होके रखी हैं। और बार बार जब जब थर्सडे आता है तो फिर ये सारी मेमोरी सामने आने लगती है। टीवी ऑन होने का साउंड, प्रेशर कुकर की सीटी का साउंड, लैंडलाइन की घंटी का साउंड, साइकिल की घंटी का साउंड, नेबरहुड के वो क्रिकेट में गली में आउट चिल्लाने का साउंड। 90s एस्थेटिकली परफेक्ट हो ना हो पर इमोशनली काफी काफी परफेक्ट और फुल था। सब कुछ स्लाइटली एक्स्ट्रा ज्यादा, एक्स्ट्रा कलर, एक्स्ट्रा ड्रामा, एक्स्ट्रा मेलोडी। स्पेशली अगर हम बॉलीवुड की बात करें, हीरो का एंट्री मतलब हवा अच्छी सी चलनी चाहिए, शर्ट उड़नी चाहिए पीछे से। सैड सॉन्ग का मतलब फुल वायलिन का यू नो ऑर्केस्ट्रा। और रोमांटिक सॉन्ग्स में स्विट्जरलैंड ऐसा लगता था ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा। पर उसी ओवर द टॉप दुनिया में रियल इमोशंस भी इतने सारे थे। कुमार सानू जी की आवाज कैसेट पे स्लाइटली ना हिस्सी करती थी, फिर भी यार डायरेक्टली दिल पे हिट करती थी। गोविंदा के नियॉन कलर के अतरंगी आउटफिट्स का लॉजिक हम लोग कभी भी फॉलो नहीं करते थे, फिर भी पूरा का पूरा देश उनको कॉपी करता था। ऑनेस्टली 90s में ट्रेंड्स सोशल मीडिया से नहीं, मूवीज से आते थे। चाहे वो हेयर कट्स हो, फ्रेंडशिप बैंड्स हो, बारिश वाले गाने हो, गॉगल्स हो, पोजेस हो, सब कुछ सिनेमा इंस्पायर्ड। इसीलिए ये मिक्स टेप सिर्फ नॉस्टैल्जिया का शो नहीं है, ये वो जगह है जहां एक स्पेल, एक साउंड, एक पुराना डायलॉग सडनली आपको स्कूल के कॉरिडोर, समर वेकेशन या संडे मूवी के सामने यूं ही खड़ा कर देता है। तो बस रेडी तो हम सब है ही, और फिर से खुल जाए 90s का हमारा वो वक्त। कांट वेट, स्टे ट्यून्ड।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: '90s में एंटरटेनमेंट का रैंडम स्क्रॉलिंग से कोई नाता रिश्ता ही नहीं था। नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा यहाँ पर आपके साथ चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। इस प्लानिंग का संडे वाली 90s में सबसे बड़ा औजार क्या था? न्यूज़पेपर का टीवी गाइड सेक्शन। क्या इम्पोर्टेंस होती थी बॉस उस छोटे से कॉलम की। पूरे हफ्ते के टीवी के स्केड्यूल जो है वहां पे उस एक कॉर्नर में उसको प्रिंट किया जाता था, राइट? याद आया कुछ आपको? फ्राइडे नाइट को या संडे मॉर्निंग को घर में कोई ना कोई न्यूज़पेपर खोल के तो चेक करता ही करता था कि अरे इस संडे हवा आपके है, कौन आने वाली है, और फिर निकलता है हमारा पेन या स्केच पेन, व्हाटएवर इज अवेलेबल आसपास में, एंड मूवी के आसपास फुल एक सर्कल बनाया जाता था, जैसे नेशनल इवेंट हम कैलेंडर पे मार्क कर रहे हों। 90s में मूवी देखना इंस्टेंट नहीं होता था, हमें वेट करना पड़ता था उसको देखने के लिए। आई थिंक इसीलिए उसकी वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा हम करते थे। एक्साइटमेंट भी काफ़ी, मतलब डबल ट्रिपल होती थी। पूरा वीक एंटिसिपेशन में चला जाता था कि भाई कितने बजे स्टार्ट होगी, उससे पहले यू नो प्लानिंग कर ली, सारे होमवर्क फिनिश कर लो। एंड संडे मूवी का जो टाइम है ना, उसका एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अलग हुआ करता था 90s में। कर्टन्स जो है वो थोड़े से बंद कर दिए जाएंगे, स्नैक्स रेडी कर दिए जाएंगे, पूरा फैमिली टीवी के सामने एकदम बैठा होता था। इसमें कोई रिमोट फाइट नहीं होती थी क्योंकि ऑप्शन ही एक है, कहाँ से होगी। एंड द फनीएस्ट थिंग इज, मूवी स्टार्ट होने से पहले ही सब कोई सेटल हो जाते थे कि भाई जिसको जिसको वॉशरूम जाना है अभी जाके हो आओ। आज हमारे पास जैसे पॉज का बटन है, तब आई थिंक पेशेंस का बटन था हमारे पास। न्यूज़पेपर गाइड में सिर्फ मूवीज नहीं, आई थिंक कार्टून्स एंड क्रिकेट मैचेस, स्पेशल प्रोग्राम्स, ये सब हम केयरफुली ट्रैक कर सकते थे। कभी कभी तो स्कूल में ऐसे डिस्कशंस भी होते थे कि यार कल वाली मूवी देखी एंड अगर मिस हो गई तो फिर महीनों महीनों तक जो रिग्रेट, या क्योंकि रिपीट कब आएगा किसी को नहीं पता, राइट? सो शायद इसीलिए 90s का एंटरटेनमेंट ना इतना मेमोरेबल लगता है क्योंकि उसमें अबंडेंस नहीं थी, काफी सारी वैल्यू थी। एंड ऑनेस्टली न्यूज़पेपर में मूवी सर्कल करने का जो सेटिस्फैक्शन आता था ना, इट्स लाइक एड टू वॉच लिस्ट, या जो हम अब यूट्यूब पे करते हैं, बट उसमें वो सेटिस्फैक्शन, वो मजा नहीं आते, मतलब क्योंकि उसकी लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी होती थी। इधर तो मतलब इंतजार, 90s के वो अमेजिंग थे जब इंतजार में भी मीठा मीठा नशा था मेरे दोस्त। गाने सुनते हैं, है ना? स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव चल रहा है मस्ती 90s मिक्सटेप।

कसल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। आपको वो स्पार्कल जेल पेंस याद है? क्या मतलब ट्रेंड किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 90s में कि अब तो हेडिंग हम इसी से लिखेंगे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन थ्रॉप के साथ हमारा सभी का फेवरेट शो चल रहा है। जो ट्यून इन कर रखे उनको तो पता ही है, ये है मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं हूं अंतरा यहाँ पर आपके साथ। एंड भाई, जेल पेन, यस, एकदम स्पेशल चीजें हुआ करती थी 90s के स्टेशनरी बॉक्सेस में। ये भी एक कैटेगरी हुआ करती थी कि ये नॉर्मल यूज के लिए है और ये सिर्फ स्पेशल ओकेजन में यूज करने के लिए है। और इस स्पेशल कैटेगरी का सुपरस्टार होता था वो फैंसी सा जेल पेन, मेटालिक इंक वाले और वो चमकी चमकी ग्लिटर वाले, वो फ्रूटी स्मेल वाले। आई कैन जस्ट, मैं फीलिंग ही आ गई बात करते करते। क्या रॉयल ट्रीटमेंट मिलता था ना उन्हें, एवरी डे क्लास वर्क के लिए इसको यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ प्रोजेक्ट के वो हेडिंग्स के लिए है, मतलब पूरा नोटबुक ब्लू पेन से भरो पर टाइटल गोल्डन जेल पेन से। डू यू रिमेम्बर दैट गोल्डन एंड सिल्वर कलर का जेल पेन? क्या मस्त, इतना ज्यादा फेमस हुआ था ये 90s के टाइम पे। एंड उसमें हेडिंग लिखते वक्त भी फुल कॉन्सेंट्रेशन, जैसे हम असली सोना ही यूज कर रहे हो। इट यूज टू बी लाइक दैट बिकॉज दोज पेन्स वर अ लिटल एक्सपेंसिव देन द यूजुअल वंस, राइट? स्लो मोशन में राइटिंग चल रही है ताकि इंक जो है वो स्मूथ आए। और वैसे भी इफ यू रिमेम्बर, उनकी स्मूथनेस एक अलग ही लेवल पे आती थी, है ना? कभी बबल लेटर्स बना दिए, कभी शेडो इफेक्ट दे दिया, कभी अंडरलाइन पे एक्स्ट्रा ग्लिटर मार दिया। 90s में स्पेशल चीजें इंस्टेंटली यूज नहीं किया करते थे हम, संभाल के रखते थे और उसको फिर यूज किया करते थे, चाहे वो फैंसी इरेजर हो, नए स्टिकर्स हो, परफ्यूम वाले इरेजर या पेंसिल्स हो, एंड या फिर जेल पेन्स हो, सब गुड नोटबुक्स के लिए रिजर्व्ड। एंड द फनीएस्ट थिंग, कभी कभी जेल पेन इतना ज्यादा हम लोग प्रोटेक्ट करने लगते थे कि इंक खत्म होने से पहले ही पेन मिसिंग। स्कूल में एक्सचेंज सिस्टम भी हुआ करता था, एक बार यूज करने देना है प्लीज, एक बार। और नेचुरली सबको ग्लिटरिंग ट्राई करना होता था। आज की स्टेशनरी में मोस्टली काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, तब की स्टेशनरी की चीज़ों में आई थिंक काफ़ी पर्सनालिटी होती थी। पेंसिल बॉक्स का जो है खोलते ही पता चल जाता था कि भाई बंदा आर्टिस्टिक है, स्पोर्टी है या फिर फुल ऑन फिल्मी है। ऑनेस्टली 90s के नोटबुक्स भी स्लाइटली थोड़े से अगर देखा जाए ड्रामेटिक होते थे। सिंपल नोट्स भी कलरफुल हेडिंग्स की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट लगने लगते थे। मैं उन स्टूडेंट्स में से बिल्कुल भी नहीं थी, मैं ये सारे कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के फाइल्स में किया करती थी, लेट मी you that, but I know of my friends and students who used to do that, and their unki copies mang ke hum homework karne jate the na, yaar kya kamaal hi lag rahi hai, dekhna to bahut hi achhi lag rahi hai. Yeah, gel pens, I tell you, kya hi yaad aa gaya, aur kya hi kuch nahi mujhe yaad aa jata hai jab main ye show karti hu, but I love each and every bit of it. Radio Masti 24/7 live par aap rahiye mere sath, kahin na jaye, kyunki hamari ye 90s wali masti ab to aur chalegi.

0: My heart.
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
2: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
3: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
4: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Musti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Musti 24/7.

कभी कभी सोचती हूँ 90s का जो बॉलीवुड का रोमांस था वो रियलिस्टिक कम और फ्लोई ज्यादा था. आई टेल यू व्हाई. मस्ती 90s मिक्सटेप आप सुन रहे हो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. मैं हूँ अंतरा, यहाँ पर 90s वाली अंतरा आपके साथ. इस फ्लो का जो बिगेस्ट सुपरस्टार आप बताओ कौन था? हीरोइन का दुपट्टा. क्या लेजेंडरी दुपट्टे होते थे यार, इतने लंबे, ओके, इतने ड्रामेटिक कि कभी कभी लगता था कि उनके लिए अलग से लगेज अलाउंस यू नो बिल्कुल जारी कर देना चाहिए. माउंटेन पे हीरोइन खड़ी है और दुपट्टा हवा में, ऑफिशियली इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ जी रहा होता था. कभी हीरो के फेस पे आ रहा है, कभी यू नो पेड़ से जाके अटक जा रहा है, कभी स्लो मोशन पे पूरा आपने आसमान ही कवर कर डाला है. ऑनेस्टली 90s रोमांस का हाफ इमोशन बॉलीवुड पे दुपट्टा ही क्रिएट किया करता था. इफ यू कम टू थिंक अबाउट इट, 90s के कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट्स ना इंटेंशनली, लेट मी टेल यू लिटिल बिट ऑफ अंदर की बात है ना, 90s के कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट्स ना इंटेंशनली एक्स्ट्रा लॉन्ग दुपट्टास डिजाइन करते थे, ठीक है, बिकॉज सॉन्ग्स के लिए, उनके इफेक्ट के लिए वो चाहिए होता था. डायरेक्टर्स को फैब्रिक मूवमेंट, स्क्रीन पे रोमांटिक टेक्सचर जो है वो लगता था और उसकी डिमांड उन लोगों को, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स को ऑलरेडी पता होती थी कि ये तो लगना ही लगना है. मतलब जितना ज्यादा हवा में उड़ता फैब्रिक उतना ज्यादा सिनेमैटिक फील, और इसलिए सॉन्ग्स में जायंट विंड मशीन्स भी यूज होते थे. इनडोर सेट हो या आउटडोर, दुपट्टा को ड्रामेटिक बिहेव कराना है. रियल लाइफ में कोई जायंट दुपट्टा है वैसे तो मतलब बड़ा ही ड्रीमी सा लगता है, पर स्क्रीन पे इट लुक्स लाइक प्योर एलिगेंस. स्पेशली 90s की हीरोइन माधुरी, जूही, रवीना, करिश्मा कपूर सबके सॉन्ग्स में दुपट्टा जो है ऑलमोस्ट सपोर्टिंग एक्टर होता था. कभी रोमांस क्रिएट कर रहा है, कभी कंफ्यूजन, कभी फुल कोरियोग्राफी एंड कलर्स भी ब्राइट येलो, डीप रेड, नियॉन ग्रीन. 90s में सटल होना वॉज नॉट अ थिंग, इट वॉज लाइक आउट एंड लाउड. आजकल की स्टाइलिंग बहुत एस्थेटिक है, स्लीक है, तब स्टाइलिंग काफी काफी जो है इमोशनल थी. फैब्रिक भी अपनी अलग एक्टिंग करता था. इसीलिए 90s के सॉन्ग्स ना, उसके वीडियोस इसीलिए इतनी ज्यादा ड्रीमी लगते थे. उनमें लॉजिक कम था, विजुअल इमोशन ज्यादा था. रेडियो वस्ती 24/7 लाइव पर यूं ही हमारी 90s वाली बातें चलती रहेंगी. आप बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो वस्ती 24/7 लाइव.

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन, योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: मेमोरीज की भी खुशबू होती है एंड 90s की मेमोरी तो डेफिनेटली होती है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s की मेमोरीज सिर्फ विजुअल्स या गानों के लिए नहीं होती है यार, ये खुशबुओं के लिए भी होती है। एक बहुत ही स्पेसिफिक सी 90s के स्मेल के बारे में बात करने वाली हूँ मैं। नए नए किताबें नहीं, नए नए वीडियो कैसेट के कवर का प्लास्टिक। आई नो आई एम बींग वेरी वेरी स्पेसिफिक बट इट इज सो वेरी 90s। सो वीडियो लाइब्रेरी से कैसेट रेंट पे जब आप लाते थे उस टाइम पर, या नई VCR कैसेट जब घर आती थी, ऑटोमेटिकली उसका कवर ओपन करके उसका वो जो फर्स्ट स्मेल था, किसी ने ऑफिशियली सिखाया नहीं था पर ऑलमोस्ट सभी कोई करते थे, वो स्लाइटली वार्म सी प्लास्टिक की स्मेल मिक्स्ड विद दैट मैग्नेटिक टेप की वियर्ड सी खुशबू, एंड यू नो इंस्टेंटली एक फील आती थी मूवी टाइम। 90s में एंटरटेनमेंट फिजिकल होता था। कैसेट हाथ में पकड़ो, कवर आर्ट देखो, अंदर का फोल्डेड लेबल पढ़ो, पूरा एक रिचुअल। आज क्लिक करो और मूवी प्ले हो जाती है, तब मूवी स्टार्ट होने से पहले ही एक्साइटमेंट बिल्ड हो जाया करती थी। और कैसेट कवर्स भी कितने ड्रामेटिक होते थे, हीरो का जायंट सा चेहरा, एक्सप्लोजन वाला बैकग्राउंड, बोल्ड फॉन्ट्स, नीचे सुपर हिट लिखा हुआ होता था नहीं कभी एक्शन मूवी के डार्क ब्लैक कवर होते थे, कभी गोविंदा कॉमेडी के फुल यू नो ब्राइट कलर्स से बने हुए कवर्स होते थे। और वीडियो लाइब्रेरी का जो माहौल होता था, उफ, शेल्फ्स पे लाइंड अप कैसेट्स, प्लास्टिक कवर्स की वो मिक्स्ड सी स्मेल और भैया जी रेकमेंडिंग ये वाली ले जाओ, हाँ ये वाली आजकल बड़ी चल रही है, ये वाली नहीं है ये वाली ले जाओ घर के यू नो घर आकर कैसेट का यू नो बहुत ही केयरफुली VCR में डालना, वो मैकेनिकल खट सी एक वो जो साउंड आती थी, फिर ट्रैकिंग को एडजस्ट करो, पिक्चर को क्लियर करो और मूवी ऑफिशियली स्टार्ट करो। इसीलिए ही 90s की मेमोरी इतनी अलाइव लगती है, क्योंकि हम उन्हें सिर्फ देखते नहीं थे, फील भी करते थे। साउंड हो, टेक्सचर हो, स्मेल हो, सब मेमोरी का पार्ट था। ऑनेस्टली आज भी कहीं ऐसे ओल्ड VCR के कैसेट की प्लास्टिक की स्मेल आ जाए ना, तो ब्रेन अपना इंस्टेंटली बोलता है भाई मूवी टाइम, लेकिन नहीं मिलती ना, क्या करे। बट यहाँ पर डेफिनेटली इस शो पर 3 घंटा सिर्फ और सिर्फ 90s की खुशबू लेकर चलते हुए जा रहे हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
3: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
2: नाइन्टीज में कभी कोई चीज छुपा के रखनी होती थी तो आप कैसे रखा करते थे, बताओ बताओ, मुझे भी जानना है। अपने वाले तो मैं कितने ही बताते रहते हूँ यहाँ पर रेडियो बस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ, मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। भाई 90s के स्कूल के बच्चों के पास लॉकर्स अगर ना हो, पर एक चीज डेफिनेटली होती थी, सीक्रेट स्टोरेज सिस्टम, ऑल्सो नोन एज द कंपस बॉक्स। ऑफिशियली उसमें स्केल, कंपस, इरेजर एंड बाकी सारी चीजें जो हम कभी नहीं यूज करते थे प्रोटेक्टर के अलावा, ये सारी तो चीजें होनी चाहिए है, वो तो होती थी, बट रियलिटी छोटे छोटे टाइनी टाइनी फोल्डेड नोट्स, आपके फेवरेट रैपर्स, क्रिकेट प्लेयर के स्टिकर्स, लकी वो कॉइन्स, वो इरेजर का छोटा छोटा पीस, और कभी कभी आपके फेवरेट स्टार की फोटो छोटी सी, मतलब स्टेशनरी कम पर्सनैलिटी ज्यादा, राइट। और हर कॉम्पस बॉक्स का वो हिडन एक सेक्शन होता था, अरे वही ना, ऊपर देखो है ना, ऊपर वो एकदम स्टेंसिल के जैसा सेक्शन होता था ना, उसको हटाओ तो नीचे तो ये सारे सामान ही मिलते थे ना, वो टाइनी से ट्रे के नीचे वाला स्पेस, अब याद आया आपको फाइनली, ओके, वही था ओरिजिनल सीक्रेट वॉल्ट। 90s के किड्स अपनी मिनी दुनिया जो ना साथ में लेकर चलने में मानते थे, इसीलिए किसी के पास सेंटेड इरेसर का कलेक्शन, किसी के पास WWF का स्टिकर, किसी के पास फ्रेंडशिप का कोई नोट, एंड क्लास बोरिंग हो तो क्वाइटली यू नो अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए कॉम्पस बॉक्स खोल लो। अपना ही हिडन ट्रेजर जो है देख देख के हम खुश हो जाया करते थे कि जैसे हम खुद ही के म्यूजियम के क्यूरेटर बन गए हो ऑल ऑफ अ सडन। एंड कॉम्पस बॉक्स जो है उसकी साउंड भी आपको याद है, मेटल का बॉक्स, टक से वो बंद होता था, कभी मैग्नेटिक वाला फैंसी बॉक्स, कभी वो टिन वाला डेंटेड वाला वर्जन, वो आई वॉज द ओनर ऑफ दोज डेंटेड वर्जन, क्योंकि एक ही ब्रांड के ना नॉर्मली एक आता था और वो ना सारे मिडिल क्लास फैमिलीज वही वाला सेम टू सेम, इसीलिए कई बार चीज़ें खुमघुम भी हो जाती थी, चोरी भी हो जाती थी क्लास से, ये नेचुरली जो है कंपैरिजन भी फुल ऑन होता था कि ओ तो नया ज्योमेट्री वर्क्स। आजकल बच्चे जो है क्लाउड स्टोरेज यूज़ करते हैं, तब इमोशनल स्टोरेज कॉम्पस बॉक्स में हमारे हुआ करता था। ऑनेस्टली उस छोटे से बॉक्स में सिर्फ ये सामान नहीं होते थे, फेवरेट थिंग्स एंड इनसाइड जोक्स एंड स्कूल के क्रश के रिमाइंडर्स एंड गुड लक चार्म्स, पूरा का पूरा बचपन 90s का इन अ कंप्रेस्ड वर्जन। इसीलिए आज भी ओल्ड कंपस बॉक्स कभी अगर दिख जाए ना, उसके स्क्रैचेस देखते ही आधी से ज्यादा मेमोरीज तो यूं ही ताजा हो जाती है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, बाकी की मेमोरीज 90s वाली मैं यहां पर इस शो पे आके ताजा कर देती हूँ, बस वाजिब आई है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे ये 90s का सिलसिला तो बिल्कुल यूं ही चलता रहेगा।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: Tushahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
6: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
5: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
6: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा on Radio Masti 24/7 Live.
5: For show timings, check out the Radio Masti 24/7 Live app. RJ Mugdha ke saath, gossip bhi, masti bhi, sarcasm bhi. Sab kuch sirf Masti Hangout.

कंसल से कसित की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रंप के साथ, और यहाँ पर चल रहा है क्या मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s बॉलीवुड में आपने कभी ध्यान दिया है, विलन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए बैक स्टोरी की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती थी। बस पार्टी का एक सीन दिखाया, उसमें एंट्री करा दो और उसको पहना दो फुल वाइट सूट। वैसा तो लॉजिक कहता है कि काला पहना दो, बट नहीं, विलन याद करो फुल वाइट सूट, अचानक से चमका ना, ओह माय गॉड, सही तो है ये बात। ऑडियंस समझ जाती थी कि आ बंदा में ये तो कुछ गड़बड़ है। अरे सीरियसली 90s के रिच विलन्स का ऑफिशियल ड्रेस कोड ही वाइट होता था, वाइट ब्लेजर, वाइट पैंट्स, वाइट शूज, कभी वाइट हैट भी, और साइड में होता था व्हिस्की का ग्लास, एकदम कंपल्सरी। अब हीरो की बात की जाए तो यूजुअली बड़ी सिंपल सी फ्लोरल सी शर्ट या फिर लेदर का जैकेट, एंड ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। 90s कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स इंटेंशनली विलन्स को विजुअली अलग दिखाने के लिए ब्राइट ऑल वाइट आउटफिट्स को यूज किया करते थे, स्पेशली पार्टी सीन्स में, क्योंकि लाइटिंग में वाइट इंस्टेंटली स्टैंड आउट करता था और उससे ऑडियंस को क्विकली ये समझ में आ जाता था कि इंपॉर्टेंट शेडी कैरेक्टर हैज एंटर्ड द सीन। मतलब फैशन भी और स्टोरी टेलिंग भी साथ साथ में, एंड विलन्स का एटीट्यूड भी फुल ऑन ड्रामेटिक, स्लो क्लैप, ईविल सी एक स्माइल, बैकग्राउंड में सैक्सोफोन या फिर वो सिंथ का म्यूजिक, एंड वो जायंट सी पार्टी के सेट्स, डिस्को लाइट्स, फेक शैंपेन, स्मोक मशीन, और सेंटर में विलन इन व्हाइट सूट। उफ, वो 90s सटल क्या होता है, आई डोंट थिंक सो, नथिंग वॉज सटल अबाउट 90s। पर ऑनेस्टली इसी ओवर द टॉप स्टाइलिंग की वजह से कैरेक्टर्स मेमोरेबल भी बन जाया करते थे। आज रियलिस्टिक फैशन है, तब सिनेमैटिक फैशन था, रियल लाइफ लॉजिक कम, स्क्रीन पे इम्पैक्ट ज्यादा। एंड द फनी थिंग इज कि कभी कभी हीरो भी व्हाइट सूट पहन लेता था, पर तब उसके साथ सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग हुआ करता था। विलेन के साथ डेफिनेटली इलीगल जो है वो डीले चल रही होती थी। 90s बॉलीवुड इतना एंटरटेनिंग है आई टेल यू, उसमें कलर्स भी ऐसा लगता था कि एक्टिंग ही कर रहे हो, मुझसे तो तारीफ करा लो कितनी भी 90s की। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल के लिए तारीफ करो इन गानों की, एंड देन ऑफ कोर्स कम बैक।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा।
2: हाँ जी जी।
1: आधा केजी मसूर दाल।
2: जी जी।
1: काजू किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
2: जी जी।
1: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, why to fear when GG Mart is there?
1: क्या जी?
2: जी जी, GG Mart, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart करो, checkout करो, और grocery at your doorstep.
1: वाजी, क्या बात जी।
2: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
2: Oh God, Poppins. Yes, Poppins याद आ गया। Radio Masti 24/7 live on Trump के साथ Masti 90s mixtape चल रहा है भाई। हर किसी का Poppins के साथ अपना अपना सिस्टम होता था उसको खाने का। If you remember, I don't know if you don't remember, then आप तो definitely आपको याद आ जाएगा क्योंकि मैं बात ही उसी की करने वाली हूँ। 90s में बच्चों के लिए एक चीज बहुत ही seriously ली जाती थी, Poppins का कलर ऑर्डर। सच में पॉपिन सिर्फ कैंडी नहीं थी, एक पर्सनालिटी टेस्ट के बराबर जो है हुआ करता था। किसी को ऑरेंज सबसे ज्यादा फेवरेट, किसी को ग्रीन, किसी को पिंक, और सबका एक फिक्स्ड ईटिंग पैटर्न होता था। वो क्या, तू येलो पहले खाता है या ऑरेंज वाला पहले खाता है? डिस्कशन भी उस पर ऐसे होती थी कि पता नहीं कौन से हम लोग पॉलिटिकल डिसीजन ले रहे हैं दुनिया चलाने के लिए। पॉकेट खोलते ही फर्स्ट काम क्या करना है, कलर्स करने हैं इंस्पेक्ट। फिर मेंटली डिसाइड करना है दैट कौन सा कलर पॉपिंस का लास्ट में बचाना है, लास्ट में सेवर करने के लिए, क्योंकि फेवरेट कलर का टेस्ट तो सबसे स्पेशल लगता है। 90s में चॉकलेट्स और कैंडीज क्विकली फिनिश नहीं होती थी, प्लान्ड होती थी। वन बाय वन उसको ईट करते जाओ, स्लोली स्लोली एंजॉय करो। और पॉपिंस के टाइनी राउंड वो जो कैंडीज का टेक्सचर, याद आ रहा है मुझे तो ऐसे सोच सोच के, थोड़ा हार्ड, थोड़ा स्वीट और फिंगर्स पे हल्का सा कलर का मार्क। एंड स्कूल में शेयरिंग का कल्चर तो पॉपिंस में सबसे ज्यादा इजी होता था, ऑरेंज वाला देना। पर नेचुरली फेवरेट कलर एक्सचेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट, इट वाज इन 90s एंड आई थिंक टिल डेट। ऑरेंज पॉपिंस इज माय फेवरेट, माय। और फनी थिंग वाज दैट साइंटिफिकली टेस्ट ऑलमोस्ट सेम जो है हुआ करता था, पर ब्रेन कन्विंस था कि ग्रीन का अलग ही टेस्ट था, क्योंकि 90s में इमेजिनेशन भी काफी फ्लेवर ऐड करती थी। एंड दोस कलरफुल रैपर्स, ब्राइट रेड्स, येलोज, ग्रीन्स, पूरा 90s ही कलरफुल था यार, सीरियसली वाला। उसी के साथ साथ एक और वर्जन आया था, दैट वॉज रोला कोला। पता नहीं आप याद है, पॉपिंस जैसा था बट इसका फ्लेवर कोला वाला था। ओ माई गॉड, एंड इवन मोर देन पॉपिंस आई यूज टू लव रोला कोला। ये जो एक तो कोल्ड ड्रिंक ऐसे ही पसंद थी, बट ये जो कैंडी फॉर्म में इन्होंने निकाल दी ना, ओहो, मजे ही आ गए उसको खाने में। आज भी गमीज वगैरह कभी खाने का मन होता है तो वो जो कोला फ्लेवर्ड वाले होते हैं ना, तो बड़े कमाल के लगते हैं। सडनली आई एम टॉकिंग अबाउट कैंडीज एंड रीसेंट हमारे मोदी जी, मेलोडी जी से मिले, एंड यू नो व्हाट अ 90s बैंटर दे हैड। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट वीडियो और नॉट। ओके, मोदी जी गिफ्टेड मेलोडी पैकेट ऑफ मेलोडी, या एंड मेरे दिमाग में इंस्टेंटली उसको देख के लगा, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। आई एम लाइक स्टॉप, ये बैकग्राउंड स्कोर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, लेट इट बी लाइक दैट। आई थिंक हमें भी चलना चाहिए आगे। आपके दिमाग में नहीं चला? ओ माई गॉड, इट्स सो वेरी 90s।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
1: आई लव यू रसना,
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन, योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: हेलो 9821026212 BPL, अरे 9820026235 मैक्स टच,

से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। आप में से कितने सारे लोगों ने अपने पेरेंट्स का कभी ना कभी सिग्नेचर कॉपी किया है, नहीं किया है? I'm just asking. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं अंतरा आपके साथ, एंड यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। 90s कूल लाइफ का एक स्किल जो सीक्रेटली हर कोई ही डेवलप कर रहे होते हैं, पेरेंट का सिग्नेचर कॉपी करना। होमवर्क डायरी या टेस्ट पेपर पे जब रेड मार्क्स आते थे ना, तब सडनली क्रिएटिविटी और ये सारी बदमाशियां ना एक्टिवेट हो जाया करती थी कि देखो मम्मी को तो दिखाने पे चपेड़ी चपेट पड़ेगी, बॉस कैसे बचा जाए। और फिर स्टार्ट होता था रफ नोटबुक पे सिग्नेचर का प्रैक्टिस सेशन। एक बार ट्राई, दो बार ट्राई, तीन बार ट्राई, कुछ तो कोई कहीं ना कहीं नहीं नहीं मैच नहीं हो रहा है। कॉन्फिडेंस का आप लेवल देखना चाहिए भाई, उस टाइम पे ऐसा हाई होता है। विजडम तो जीरो पे चल रहा है, नेगेटिव पे बोलो, क्योंकि ऑब्वियसली टीचर्स इंस्टेंटली देख के जो है समझ जाया करते थे कि ये साइज वियर्ड है, स्पेलिंग थोड़ी सी शेकी शेकी है, कभी कभी ओवर राइटिंग में भी या फिर टू नीट हो गया, समथिंग लाइक दैट। सो सी आई एम नॉट सेइंग 90s के बच्चे जो है क्रिमिनल्स वगैरह थे, भाई पैनिक आर्टिस्ट का नाम देना चाहती हूँ मैं उनको, पैनिक आर्टिस्ट थे वो। बस उस मोमेंट पे लगता था कि यही सोल्यूशन है, और यार बच्चे बदमाशी करते हैं यार, ये छोटी छोटी चीज़ें। स्कूल डायरीज भी कितनी सीरियस यू नो चीज़ें होती थी, कि रिमार्क सेक्शन होता था, रेड इंक में जो है कॉमेंट्स आते थे कि आज ये नहीं हुआ, कल वो नहीं हुआ, परसों वो नहीं हुआ। डायरी घर में ले जाना मतलब टेंशन से भरा हुआ, उफ़ो क्या ही। एंड कुछ बच्चों के तो पेरेंट्स की रियल जो है सिग्नेचर ऑब्जर्व भी करते थे, कि जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो कि अच्छा पापा यहाँ पे कर्व बनाते हैं अपने सिग्नेचर पे। पर नेचुरली जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो क्योंकि हालत भी तो उतनी खराब है, वी वॉन्टेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट वी कुड नॉट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि हम नर्वस हैं, हमारी एंजाइटी लेवल अलग ही लेवल पे चल रही है कि भाई पता नहीं क्या होगा। एंड अगर कभी गलती से टीचर उसके बाद बोल दे, अगर तो आपने ये पुल ऑफ कर लिया, ठीक है आपने अपने पेरेंट के सिग्नेचर कॉपी कर लिया कि कल पेरेंट से मिलना है, भाई साहब गेम ओवर। ठीक है, आजकल डिजिटल पोर्टल्स है, ईमेल है, तब एक छोटा सा सिग्नेचर पूरा मूड डिसाइड करता था। और ऑनेस्टली 90s स्कूल लाइफ की इनोसेंस अगर मैं कहूँ तो एक बहुत ही अलग लेवल की थी, गलतियाँ भी फिल्मी लेवल ड्रामेटिक होती थी, शायद इसीलिए आज वो फेक सिग्नेचर मेमोरीज में इतनी फनी लगती है, क्योंकि उसमें रिबेलियन कम और बचपना काफी ज्यादा हुआ करता था। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि ये सारी बातें जो है ना कोई यूज नहीं करेगा, अगर तो कोई बच्चा सुन रहा है, कोई यूज नहीं करेगा, हम सिर्फ बता रहे हैं आपको, है ना, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
3: अगर तो आपने पिछले हफ्ते का एपिसोड सुना हो तो उस पर हम बात कर रहे थे कि साइकिल पे अलग अलग लेवल्स होते हैं कूलनेस शो ऑफ करने के लिए। आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्स टेप, मैं हूं अंतराब के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। और वो कूलनेस का एक फ्लेक्स तो मैंने पिछले एपिसोड में ये बताया था कि भाई खड़े होकर साइकिल पे खड़े होकर चलाना, वो अलग एक लेवल का स्वैग दिखाने का होता है। बट आज मैं एक और स्वैग वाली बात बताऊंगी ऑन द साइकिल। भाई 90s के बच्चों को ड्राइविंग स्कूल वो क्या होता है, साइकिल ही सब कुछ सिखा दिया करता था। और साइकिल में एक और लेजेंडरी फीचर था, रिवर्स पेडल ब्रेक। ठीक है, आज के किसी भी बच्चों को आप एक्सप्लेन करो ना ये बात, तो वो बड़े शौक से हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही जो है बहुत ही मतलब कायदे से मैं नीचे देखती हूँ हमारे जो है कॉन्टो में बच्चों को तो बड़े भी प्रॉपरली बिल्कुल चलाते हैं एवरी थिंग। बट हमने अपने अपने जो है ना खुद ही के ईजाद कर रखे थे। अब क्या स्मूथ कॉन्फिडेंस होता था उसमें, फास्ट साइकिल आप चला रहे हो, ठीक है, अब सडनली ब्रेक चाहिए, बस क्या करना है पेडल रिवर्स करो या स्किड मार के रोकना, तो फुल हीरो वाला मोमेंट। बिकॉज 90s का सिनेमा ऑल्सो गिव अस अ लॉट ऑफ दिस, राइट, स्पेशली डस्टी रोड्स वगैरह पे। सो 90s में स्किल्स यूट्यूब से नहीं आती थी भाई, नेचुरली बहुत डेवलप की जाती थी। साइकिल का बैलेंस, वन हैंड राइटिंग, शार्प टर्न्स, डबल सीट मैनेजमेंट, सब प्रैक्टिस से आएगी। एंड रिवर्स पेडल ब्रेकिंग का टाइमिंग भी बहुत ही बड़ा एक आर्ट और एक स्किल सेट आपको बिल्कुल प्राप्त उस लेवल पे करना होता था। ज्यादा फोर्स लगा दिया तो टायर स्लाइड कर जाएगी, कम कर दिया तो दीवार से जाके भिड़ जाओगे ब्रो। पर बच्चे ऑटोमेटिकली

को जो है लर्न कर लिया करते थे. एंड ऑनेस्टली साइकिल 90s साइकिल राइड्स का फ्रीडम लेवल ही डिफरेंट था. हेलमेट्स नहीं है, कोई फिटनेस ट्रैकिंग नहीं है, कोई साइकिलिंग गियर नहीं है, बस हवा भरानी है, स्पीड और कॉन्फिडेंस. साइकिल का साउंड भी मुझे अभी बात करते करते जो है मेरे कानों में ऐसा लग रहा है कोई ऐसे रिकॉर्ड सा चला दिया है. वो चेन की हल्की हल्की सी खटखट एंड वो बेल का ट्रिंग ट्रिंग एंड ब्रेक का वो स्क्रैची सा साउंड, पूरा का पूरा साउंड ट्रैक. एंड कॉलोनी रेसर्स फुल ऑन सीरियस की उस गली के इस कोने से उस कोने तक. फिर ऑफकोर्स दैट द स्टैंडिंग पेडल मोड वो तो मतलब था ही था. आजकल इतनी फैंसी बाइक्स है, उसमें अलग अलग गियर्स के लेवल्स है. तब सिंपल साइकिल्स थी पर कहानियाँ बहुत लिख दी हमने उस पर. इसीलिए 90s की साइकिल मेमरीज इतनी अलाइव लगती है क्योंकि उनमें डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं था, राइड इम्पॉर्टेंट होती थी. और आज जो है आजकल लोग सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन की तरफ देखते हैं. भाई सफ़र को इन्जॉय करना भी तो बनता है ना. चलिए फिलहाल 90s वाला ये सफर हम इंजॉय यूं ही करते रहेंगे. और रेडियो बस्ती 24/7 लाइव.

0: you to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: रिहर्सल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार्ट पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: नाइन्टीज में हर चीज में एक छोटा सा छोटा अपना लॉजिक हुआ करता था। इवन की डिस्को लाइट्स अगर आपको दिखानी हो और फील कराना हो सिनेमा में, तो उसका भी अपना एक लॉजिक हुआ करता था। मैं बताती हूँ ना, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s में एक स्टेप अंतरा 90s वाली आपके साथ यहाँ पर। एंड 90s बॉलीवुड का डिस्को लॉजिक बहुत ही सिंपल था, लाइट्स कम अगर आपको लग रही है तो शीशा लगा दो। सीरियसली 90s के डांस सॉन्ग्स में मिरर्स का ऑब्सेशन नेक्स्ट लेवल का हुआ करता था। वॉल पे मिरर्स, पिलर्स पे मिरर्स, डांस फ्लोर पे रिफ्लेक्शन, और कभी कभी तो हीरो के सनग्लासेस में भी एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन। पूरा सेट स्पार्कल मशीन जैसा लगता था। और जैसे ही डिस्को बीट स्टार्ट होती थी, लाइट्स फ्लैश, मिरर रिफ्लेक्शंस यूज्ड टू मल्टीप्लाई, एंड सडनली सेट ह्यूज और ग्लैमरस फील होने लगता था। एंड ये एक्चुअली एक बहुत ही क्लेवर फिल्म मेकिंग ट्रिक भी थी 90s के दौर में। 90s में VFX और डिजिटल लाइटिंग बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी, तो प्रोडक्शन डिजाइनर्स जो हैं मिरर हैवी सेट्स यूज करते थे ताकि लाइटिंग इफेक्ट्स कैमरा पे बिगड़ लगे। मतलब एक लाइट को मिरर्स मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, तो आपका अफोर्डेबल भी हो गया और ड्रामेटिक भी हो गया। और इसीलिए डिस्को सॉन्ग्स विजुअली आपको कभी भी देख लो तो बहुत ही ग्रैंड फील हुआ करते थे 90s के टाइम पे। स्पेशली गोविंदा का अगर कोई गाना हो या पार्टी ट्रैक्स हो विद डांसर्स एवरीवेयर, सो सिल्वर कॉस्ट्यूम्स है, शाइनी जैकेट्स है, स्मोक मशीन है, मिरर के रिफ्लेक्शंस है, फुल 90s विजुअल ओवरलोड। एंड डांस की कोरियोग्राफी भी मिरर्स के अकॉर्डिंग ही हुआ करती थी। स्पिन करो तो रिफ्लेक्शंस मल्टीप्लाई हो, हीरो की एंट्री तो मिरर के थ्रू रिवील की जाती थी। या ऑनेस्टली इसी एक्स्ट्रा ड्रामा की वजह से 90s के सॉन्ग्स डिस्को वाले अनफॉरगेटेबल भी लगते थे। आज क्लीन मिनिमलिस्ट सेट्स ट्रेंड में है, तब था जितना चमकेगा उतना ही चलेगा, वही एनर्जी थी। एंड ऑडियंस को भी वही पसंद था, क्योंकि 90s बॉलीवुड में रियलिज्म सेल नहीं करना होता था, स्पेक्टिकल सेल किया करता था। इसी बात पे जो है एकदम मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन किसी की ऐसी कोई पार्टी रख दे 90s डिस्को टाइप, मैं भी कोई ऐसा झकमक झकमक एकदम डिस्को टाइप। वैसे किया था हमने, इफ यू रिमेम्बर, हमने शाइन पार्टी की, तो उसमें भी मैंने एकदम, वो भी एकदम वाइब तो पूरी वैसी ही थी, एकदम झकमक झकमक। चलो एकदम झगमग करते हुए गाने आपकी तरफ 90s वाले ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
4: रहो। रेडियो मस्ती 24/7। डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: हाँ जी, बस इसी स्माइल, स्पार्कल और थोड़ी सी फिल्मी हवा के साथ आज ही मस्ती 90s मिक्स टेप यही पॉज लेगा। रिवाइंड नहीं, सिर्फ पॉज मेरे दोस्तों। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पर मस्ती 90s मिक्स टेप चल रहा था और आज हमने फिर से वो 90s वाली दुनिया को फील किया, पूरे दिल, पूरी शिद्दत, पूरी आत्मा के साथ फील किया। जब तक ओवर ड्रामेटिक ना हो तो 90s लगता ही नहीं है। जहाँ टीवी के गाइड न्यूज़पेपर में सर्कल होता था, जेल पेन सिर्फ हेडिंग्स के लिए बचाए जाते थे, वीडियो कैसेट के प्लास्टिक स्मेल भी एक्साइटमेंट दिया करती थी, कॉम्पैक्ट के बॉक्स का मिनी ट्रेजर चेस्ट एंड विलन्स का वो फुल व्हाइट सूट पहन के पार्टी में एंट्री मारना, पॉपिंस के कलर का ईटिंग ऑर्डर फिक्स होना, स्कूल की डायरी में फेक सिग्नेचर प्रैक्टिस एंड साइकिल का रिवर्स पेडल ब्रेक या वो भी डिस्को सॉन्ग्स में मिरर्स, अभी अभी बात कर रहे थे हम, इतना ज्यादा यूज किया जाता था कि लगता था पूरा सेट ही ग्लिटर खा के आया है। ऑनेस्टली 90s का मैजिक एग्जैक्टली यही था, हर चीज थोड़ी एक्स्ट्रा पर हर चीज बहुत सारी याद भी आज की डेट में। आज कन्वीनियंस ज्यादा है पर उस वक्त इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था। मूवी देखना इवेंट हुआ करता था, सॉन्ग रिकॉर्ड करना मिशन हुआ करता था, स्टेशनरी इमोशन था हमारा एंड बॉलीवुड वाह जी वाह। 90s सिनेमा रियलिज्म नहीं, ड्रीम्स बेचता था, ड्रीम्स, स्लो मोशन की हवा, जायंट वो दुपट्टे एंड ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक, सब ओवर द टॉप हुआ करता था पर फुल दिल से था। इसीलिए 90s सिर्फ याद नहीं आता, फील होता है। एक स्मेल, एक कैसेट का साउंड, एक ओल्ड कैंडी का रैपर और इंस्टेंटली हम वापस वहीं चले जाते हैं जहां संडेज थोड़े से लंबे लगते थे एंड हैप्पीनेस काफी सारी सिंपल। थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्रैवलिंग थ्रू दिस कलरफुल लिटिल टाइम मशीन ऑफ 90s विद मी। और इसी बात के साथ मैं यहां से निकलती हूँ। आई होप यू ऑल एंजॉयड द शो। टिल देन स्टे नॉस्टैल्जिक, स्टे फिल्मी और कभी कभी थोड़ा ग्लिटरी 90s हो जाए, हो जाए, हो जाए।

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे,
1: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे
2: देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: नाचने का मन है
6: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट आउट।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव

0: All music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
1: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
2: ऑल इज वेल।
1: आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट आउट।
0: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above, selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। प्रेजेंटिंग द एनकोर ऑफ योर फेवरेट शोज, अनदर डे अनदर टाइम फॉर योर लिसनिंग प्लेजर ओनली, बिकॉज सुपर हिट्स डिजर्व अ रिपीट। चेक आउट द एनकोर शो स्केड्यूल ऑन आवर एप मेन्यू।
6: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट
3: कोकलाची पाकी जुमेरात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है कोकलाची पाकी जुमेरात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है कोकलाची पाकी जुमेरात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: कैफे पुरुष ही नहीं महापुरुष है महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
3: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
4: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
3: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti Pe Bhakti, subah 6 baje se.
4: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par haan to sirf super hit back-to-back gaane aayenge. मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: नवराई माझी लाडाची लाडाची ग, आवडतीला चंद्राची चंद्राची।

0: की बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हेलो सिंगापुर, हेलो हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? सी इट्स अ मिड वीक, राइट? मतलब ऑफिशियली वो फेज है जहाँ पे कॉफी भी आपसे कह रही होती है, भाई अब मैं भी कितना संभालूंगी रे तुझको, कौन कम वक्त संभालने के लिए पीता है। वेलकम टू मस्ती हैंग आउट विद मुग्धा, लाइव फ्रॉम सिंगापुर, जहाँ पे मूड हल्का होता है और प्लेलिस्ट धमाकेदार, हैवी भी कह सकते हैं। और आज की डे जो है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हर बार की तरह 21st में है आज, और आज का जो दिन है ना, दैट इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल टी डे, वन ऑफ माई फेवरेट। मतलब ऑल द चाय लवर्स, आज तो आपका इंटरनेशनल डे है, तो जहां आप एक दिन के 24 घंटों में 48 कप पी लेते हैं, आज आप 2 कप और पी लीजिए फ्री मेरी तरफ से। 48 पता नहीं किसको कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, फिगर इट आउट। और एक और बहुत ही फन फैक्ट है, एक और दिन है और वो है वर्ल्ड मेडिटेशन डे। एक साइड शांति, दूसरी साइड जीवन की शांति, एक कड़िंग चाय, एक गरम चाय की प्याली हो। ओके, इससे पहले कि मैं बह जाऊं चाय के दरिया में, लेट्स मूव ऑन। देखो, बैलेंस इसी को कहते हैं, है ना? तो आज का वाइब हम सिंपल रखेंगे, थोड़ा सिप, थोड़ा स्माइल, थोड़ा सा म्यूजिक एंड बहुत सारी मस्ती। आप चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे कैब में हो, या हेडफोन्स लगा के दुनिया को इग्नोर कर रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं।
2: एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गए नींद रे, और खन की पायल मस्ती में तो कंगन।
1: You're most welcome, आप मस्ती हैंग आउट पर हैं। मैं हूं मुग्धा, and stay tuned.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय सिंगापुर, वेलकम बैक। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, और बचपन से सुना है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सो ऑनेस्ट है। ओके, HDB रेनोवेशन की जो ड्रिलिंग है उसकी आवाज आपको इरिटेट करती है? इरिटेशन होता है ना, या एक्साइटमेंट होता है? दोनों हो सकता है, क्योंकि अब आइलैंड वाइड काफी घरों में अपग्रेड मोड ऑन होने वाला है। जी, तो गुड न्यूज ये है कि सिंगापुर के 27 HDB एस्टेट्स जो है वो रेनोवेट होने वाले हैं, और इस प्रोजेक्ट पे अराउंड 30,000 हाउसहोल्ड्स बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब 30,000 घरों को इसका फायदा मिलेगा। मतलब कि बेटर लिफ्ट्स

0: इनकन्वीनियंस टेम्पररी है, द अपग्रेड वो परमानेंट है. मैं हूं मुग्धा एंड आई विल बी राइट बैक.
1: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

चार्ट्स टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स, मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय सिंगापुर, टेक वर्ल्ड में अभी एक जो फ्रेज है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। दिस इज मी मुग्धा, आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट पर। AI इज कमिंग, AI आ रहा है, बिल्कुल करण अर्जुन की तरह। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरा AI आ रहा है। ऑनेस्टली अब वो सिर्फ कमिंग नहीं है, इम्पैक्ट दिख रहा भाई। मेटा यानी कि हमारा फेसबुक और बहुत सारी इससे जुड़ी हुई सिस्टर कंसर्न कंपनीज ग्लोबली अराउंड 8,000 जॉब्स कट करने जा रही हैं, एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिंगापुर जो ऑफिस है वो भी इस वेव का पार्ट है। एंड सबसे फिल्मी पार्ट यू नो, एम्प्लॉयज को रिपोर्टेडली सुबह 4 बजे ईमेल्स मिलने शुरू हुए। इमेजिन अलार्म से पहले ले ऑफ का नोटिफिकेशन, दैट्स अ वेरी सैड थिंग। मुझे सबसे बुरा यही लगता है। आई लव माई बॉस, आई लव माई जॉब, आई लव माई My co-workers, I love the studio, I love मेरा desktop, I love मेरा mic. सुबह 4 बजे मैं शो करने के लिए उठ सकती हूँ, पर ऐसी ईमेल पढ़ने के लिए मैं नहीं उठ सकती। ऐसी वाली फीलिंग आती, समझ रहे हैं? But then now comes the serious part, the reason Meta अब फुल स्पीड से AI पे फोकस कर रहा है। Let me tell you, बहुत जल्दी वापस आएगा। खैर leaner teams जो है वो आपको मिल रही हैं, उनको मिल रही हैं, मतलब मोर ऑटोमेशन हो रहा है, बिगर AI investments तो हो ही रहे। इट्स ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हो ना? दिस इज वेरी स्कैरी, थोड़ा नहीं काफी स्कैरी, पर रियालिटी चेक भी है। इट्स अ थॉट एक्चुअली कि टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है तो ह्यूमंस को भी तो सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग बनना पड़ेगा, रहना पड़ेगा।
2: दिल उल्लू का पट्टा है, उल्लूले उल्लूले, जाना ना हो जहां वहीं जाता है। दिल उल्लू का पट्टा है, उल्लूले
1: उल्लूले, समझ रहे हैं? वक्त के साथ सब बदल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बदल रहे, समझ रहे हैं ना?

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन .com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
3: सिंगापुर एक बहुत ही खतरनाक सीजन चल रहा है, यू नो, आपका वॉलेट जो है वो खर्च हो सकता है कभी भी, वॉलेट बच सकता है पर डाइट नहीं, इट्स वेरी डेंजरस बहुत, क्योंकि सोशल मीडिया खोलो तो आपको सब जगह एक ही चीज दिखाई दे रही है, आम आम आम, सुपरमार्केट से लेके स्ट्रीट एंड ऑफिसेज एंड घरों से आम की खुशबू आ रही है, इट्स वेरी डेंजरस। घर पे मम्मी का एक ही डायलॉग आता है, आम फ्रिज में रखे हैं, खा लेना। ऑफिशियली मैंगो सीजन शुरू हो चुका है एंड इट्स वेरी डेंजरस, बहुत ही ज्यादा, कहते हैं संक्रामक रोग की तरह, किसी एक को देख लो आम खाते हुए फिर आम खाने का मन होने लग जाता है। सो इस मूड को और ज्यूसी बना रहा है हु? जी जी मार्ट ऑनलाइन, फ्रेश रत्नागिरी अल्फांसो हो या फिर देवगढ़ का अल्फांसो, मैंगोज जो है ना वो स्ट्रेट आपके घर आएंगे, फार्म आपके फ्रॉम द फार्म्स ऑफ इंडिया, समझ रहे हैं? एंड द स्वीटेस्ट पार्ट इज, जी जी मार्ट ऑनलाइन पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पे भेजिए 9151893 पे, तो आपको मिलते हैं स्पेशल कूपन्स एंड वाउचर्स। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सोने पर सुहागा एक कोड है, दैट इज NEW10 न्यू 10, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं कोड का तो आपको इंस्टेंटली 10% का ऑफ मिल जाता है, प्लस अगर आप $70 से ऊपर की कोई भी चीज प्लेस करते हैं ऑर्डर में तो आपको फ्री डिलीवरी मिलती है। मैंगो को यूं ही थोड़ा ना किंग ऑफ फ्रूट्स कहते हैं, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्ट, लिटरली हर एज ग्रुप में घुल मिल जाता है, वो हर चीज के साथ मिल जाता है, दही में मिला दो तो मैंगो लस्सी, दूध में मिला दो तो मैंगो शेक, आइसक्रीम बना दो मैंगो आइसक्रीम, एवें खा लो मैंगो आम रस, तो आप जानते हैं द वेरी फेमस राजस्थानी गुजराती डिश आम रस, उसके बिना तो उनका मैंगो सीजन अधूरा है। सो एवरी मैंगो लवर, आम इज आम एंड गुठलियों के दाम, गुठलियों को सुखाओ, गुठलियों को सुखाने के बाद उनका उनको जमीन में लगाओ, पौधा पानी दो और बड़ा होके आम का पेड़ बनेगा, फिर आप भी आम खाओ जब भी मन करे, अपने गार्डन से उठा के खाओ ना, कोई नहीं फाइन लगाएगा। सो दिस इज जी जी मार्ट ऑनलाइन का आम के आम गुठलियों के दाम, समझे?

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, वेलकम बैक। शो के सेकंड आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस आवर इज ऑफिशियली द बॉलीवुड एंटरटेनमेंट आवर। बॉलीवुड में एक चीज ना कभी पुरानी नहीं होती है। Well, मैं हूँ आपके साथ आपके मुग्धा, जो लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया है। लेट मी टेल यू, आप सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट, सिंगापुर का एक मात्र हिंदी रेडियो स्टेशन, समझ रहे हैं। अब आइए बॉलीवुड की बात करते हैं। बॉलीवुड में ना मैं क्या कह रही, एक चीज जो है वो कभी पुरानी नहीं होती, और वो है सरप्राइज कैमियो एंट्री। ये तो सोने पर सुहागा हो जाता है। हीरो अलग होता है पर एंट्री किसी और की याद रह जाती है आपको, है ना। और फिलहाल अपडेट्स जो आ रही हैं वो तो फुल पैसा वसूल है भाई। कॉमेडी किंग जॉनी लीवर फाइनली एक फिल्म में लीड रोल करने वाले हैं, पर ये खबर नहीं है जी, ट्विस्ट है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स फिल्म में कैमियो कर सकते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार। सो देखा, कैमियो हीरो से ज्यादा बड़ा हो गया। और SRK का रोल हो सकता है कि फिल्म के ओपनिंग सीक्वेंस में ही आ जाए, ऐसा हो सकता है। रिपोर्ट्स अभी तक तो यही कह रही है। ऑनेस्टली दिस इज नॉट जस्ट अ कैमियो, लग तो नहीं रहा है। ये ना बॉलीवुड का फ्रेंड्स रीयूनियन सॉर्ट ऑफ कॉम्बो लग रहा है, जहां पे और क्योर्स भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अक्षय कुमार भी हैं, सलमान खान भी हैं, शाहरुख खान भी हैं, और क्या पता फिल्म के फ्लोर पर आते आते और शूट होते होते और भी बहुत सारे कैमियोज आ जाएं। पर याद रखिएगा, फिल्म के लीड में जॉनी लीवर ही है। और सच बताओ, जॉनी लीवर को लीड में देखने का एक्साइटमेंट ना अलग ही होने वाला है, बिकॉज वो एक ऐसे इंसान है जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर लेकर चल सकते हैं। पर देन एक चीज और एक सच से आप नहीं भाग सकते, बॉलीवुड इज ऑल अबाउट ग्लैमर एंड नेम एंड स्टार्स।

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी? जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन .com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हे हाय, वेलकम बैक। बॉलीवुड आर है तो बॉलीवुड की बात करेंगे। बॉलीवुड फैंस का जो पेशेंस है ना, उसका लेवल बहुत हाई है, बिकॉज हमेशा बॉलीवुड अपने फैंस के पेशेंस का लेवल टेस्ट करता रहता है। अब ऐसा लग रहा है कि हमारा पेशेंस जो है बॉलीवुड फैंस का, वो मार्वल फैंस के बराबर होता जा रहा है। यस, एक टीजर अनाउंस होने से पहले उसकी थ्योरीज शुरू हो जाती हैं। और इस वीक सब वेट कर रहे थे किसका, आलिया भट्ट और शर्वरी की अल्फा का। जी, अल्फा का फर्स्ट ग्लिम्स जो है उसका बहुत मतलब बेसब्री से इंतजार हो रहा था और चीजें लग रहा था कि अब लाइनअप हो रही है, धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ये पोस्टपोन हो गया है। इस वीक सब वेट कर रहे थे कि आलिया और शर्वरी की फिल्म, स्पाई फिल्म अल्फा का फर्स्ट ग्लिम्स हम देख लेंगे। बट द लेटेस्ट बज ये है कि मेकर्स ने फिलहाल उसका जो फर्स्ट ग्लिम्स है उसको पोस्टपोन कर दिया है। वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स जो है इस प्रोजेक्ट को बहुत ही ज्यादा ग्रैंड स्केल पर लेकर आने की सोच रहा है। वो चाहता है कि जो भी हो, छोटे टीजर से लेके ग्लिम्स से लेके व्हाटएवर, बिग बिग लेवल पे हो, बड़े स्केल पे, ग्रैंड स्केल पे लॉन्च होना चाहिए। इसीलिए मेकर्स जो है अपेरेंटली परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं। वेल, क्या होती है परफेक्ट टाइमिंग? ऑनेस्टली, जब फिल्म का यूनिवर्स स्पाई यूनिवर्स होना, तो सीक्वेंस थोड़ा सा सिनेमैटिक तो होगा, यही थ्योरी मुझे लग रही है। वैसे इमेजिन करो ना, आलिया भट्ट इन एक्शन मोड, शर्वरी फुल फेयर्स अवतार में आपको दिखाई दे रही है, एंड दिस कॉम्बो ऑलरेडी इंटरनेट का जो वो क्या कहते हैं उसको, ब्लड प्रेशर, वो तो बढ़ा ही चुका है। तो आप एक काम करो, बीपी की गोली जो मैं दे रही हूँ आप उसको सुनो, अगला गाना। जब टीजर आएगा तो पता लग ही जाएगा, आई मीन ग्लिम्स आएगा तो पता लग ही जाएगा, है ना।

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हेलो सिंगापुर, तो जगहें जो होती हैं ना वो सिर्फ रेस्टोरेंट्स नहीं होती हैं, एक्चुअली वो मेमोरीज होती हैं, और एक मेमोरीज का परमानेंट एड्रेस होती है जो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए इम्पैक्ट छोड़ के जाती है। और अगर कोई जगह 25 years तक लोगों को बार बार वापस बुला रही है और लोग जा रहे हैं, 25 साल से उसने अपनी लेगेसी को बरकरार रखा है, तो समझ जाइए ना कि सिर्फ खाने की टेस्ट की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग्स एंड द इमोशंस ऑफ द प्लेस, राइट? एंड दिस इज शाही महारानी। शाही महारानी एट ट्रैफल सिटी सेलिब्रेटिंग 25 years ऑफ रॉयल फ्लेवर्स, एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। मैं हमेशा कहती हूँ कि शाही महारानी जो है ना वो हमारे हर सेलिब्रेशन में हमारा एक हिस्सा होता है सिंगापुर में, हम स्पेशली हम लोगों के, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, शाही महारानी हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। कि आप अगर अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं रहते, तो माँ बाप भाई बहन सब की कमी आपके खाने के थ्रू कम से कम तो पूरी कर ही सकते हैं। हर स्पेशल ओकेजन पे आपके लिए कुछ ना कुछ तैयार रखता है, बिल्कुल आपके फैमिली की तरह, है ना? सो बेसिकली शाही महारानी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ फैमिली, एकदम परिवार का हिस्सा सा बन गया है। 25 years जो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं शाही महारानी के, दीज आर द रॉयल फ्लेवर्स सेलिब्रेशन। जैसे कि मैंने कहा, ये कोई छोटी बात नहीं है, इट्स लाइक 25 years ऑफ बटरी करीज, स्मोकी तंदूरी प्लेटर्स, प्रॉपर नॉर्थ इंडियन कंफर्ट फूड, एंड वो एक और नान लेकर आइए। हाँ बिल्कुल, जब खाना अच्छा हो तो एक और तो सुनते रहते हैं ना, ये इमोशन है। और इस सेलिब्रेशन में उनके जो आइकॉनिक सिग्नेचर डिशेज है ना, जैसे कि चिकन टिक्का, बटर चिकन, पालक पनीर, फिश अमृतसरी करी, स्पेशल एनिवर्सरी प्राइस पे आप इंजॉय कर सकते हैं इसको। आपको सिर्फ एक परफेक्ट फैमिली डिनर को प्लान करना है और रॉयल ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। उसमें शाही महारानी कभी कोई कमी नहीं करता, बिकॉज गुड फूड फिल्स द स्टमक, बट लेजेंडरी फूड वो कॉन्वर्सेशंस क्रिएट करते हैं। और मुझे लगता है जहां पे कॉन्वर्सेशंस क्रिएट होती हैं, दैट इज समथिंग, एंड यू कैन एंजॉय योर सिग्नेचर क्लासिक्स एट जस्ट रुपीज 25 प्लस डॉलर्स, समझ रहे? अ स्पेशली क्यूरेटेड सिलेक्शन ऑफ अ मोस्ट आइकॉनिक नॉर्थ इंडियन डिशेज एट अ वेरी सेलिब्रेटरी प्राइसेस। ये वैलिड है 30th जून 2026 तक। I hope you're getting it, right? बाकी की information के लिए आप इनकी website पर भी जा सकते हैं।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकाज़म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha, Radio Masti 24/7 Live.
3: हाँ, कभी कभी दुनिया की बेस्ट स्टोरीज जो हैं वो ब्लॉकबस्टर्स ऑफिसेज में नहीं बनती हैं, होमवर्क कॉपी में शुरू हो जाती हैं, राइट? इमेजिन करो, एक स्कूल असाइनमेंट है, एक फादर हेल्पिंग हिज डॉटर, और फिर वो आइडिया 20 इयर्स के बाद कांस फिल्म फेस्टिवल तक पहुंच जाए। Sounds filmy? Yes, it's filmy because it's a film. Actually, a film है. Hollywood actor Andy की upcoming film है Diamond की जो story है, literally उनकी daughter के school assignment से शुरू हुई थी. उनकी daughter जो है Noir, वो short story लिख रही थी, बीच-बीच में अटक जाती थी, और Andy जो है उन्होंने improvisation उनकी शुरू कर दी वहीं से. बस वही जो random creative moments है ना, 20 years later Cannes premiere बन गया. सोचिए आप, एंड ऑनेस्टली स्टोरी का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? वो ये है कि कभी कभी आइडियाज ना कभी कभी इंस्टेंटली हिट नहीं होते हैं, उन्हें बस थोड़ा सा वक्त, थोड़ा अपने काम के लिए पैशन, जुनून, पागलपन, मैडनेस, और थोड़ा स्टबर्न वाला पैशन चाहिए जिसको कोई नहीं डिगा सके. 20 साल तक टिक रहना आसान है क्या? नहीं. सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई रैंडम आइडिया आपको आता है ना, उसे इग्नोर तो बिल्कुल मत करना. क्या पता फ्यूचर का कांस बन जाए, कांस का प्रीमियर बन जाए.
4: ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे कान, ये तीखी तीखी.
3: लिख लेना अपनी कॉपी बुक पे कहीं पे नोट करके, राइट? थैंक यू, लेटर.
5: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan.
1: Hey, I know you all are enjoying Masti Hangout, लेकिन आपको पता है 7 बजने वाले हैं and क्या होता है 7 बजे? We have a brand new segment जिसका नाम है The Cricket Corner. कोने में कोई लेके नहीं जाएगा, जितेश आएंगे इधर कोने में, yes, और वो देंगे IPL का एक क्विक हाईलाइट एंड देन आपकी आरजे मुग्धा विल बी बैक, आई एम बैक वाले स्टाइल में।

0: It's time for the Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live.
1: Namaste, adab, sat sri akal, and a very warm welcome to the Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live. मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त जितेश, जो लेके आता है डेली IPL अपडेट्स मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे. तो कल था IPL एक्शन कोलकाता में. मैच वॉज बिटवीन KKR एंड मुंबई इंडियंस. हार्दिक पांड्या एंड सूर्य कुमार यादव ज्वाइंड द MI स्क्वाड एंड एक्सपेक्टेड KKR ने टॉस जीत के बॉलिंग लिया और मुंबई इंडियंस को सिर्फ 147 फॉर 8 पे रोक दिया. दो देयर वाज अ गुड कैमियो बाय कॉर्बिन बॉश हु मेड 32 ऑफ 18 बॉल्स. इसके अलावा किसी और की बैटिंग पे बात करने का मन ही नहीं है. ऑन द अदर हैंड KKR बोलर्स वर टू डिसिप्लिन्ड एंड द गोट ऑफ ऑल टाइम सुनील नारायण अगेन केम अप विद अ सुपर फिगर ऑफ 4 ओवर्स 13 रन्स एंड जस्ट 1 विकेट. और अगर चेस की बात करें तो KKR kept losing wickets but were always well ahead of the required run rate. I mean they missed Raghuvanshi who unfortunately got injured while keeping in the first innings and then he was replaced by Tejasvi Dahiya as concussion substitute. For KKR everyone chipped in with their runs while Powell scored 40 of 30 balls and man of the match Manish Pandey. What a guy. He is playing his 19th IPL season along with Kohli and Rohit Sharma and he scored 45 of 3 balls and got the prize. KKR chased the score in 19th over with 4 wickets in hand. MI bowling looked really depleted except for Corbin Bosch who got 3 wickets and caught a stunning catch at point to dismiss Powell. With this win, KKR is still in hunt for playoffs with their last game versus Delhi Capitals on Sunday which is 24th of May. दोस्तों अगर आप देखो तो लास्ट मंथ 27th अप्रैल अगर पॉइंट्स टेबल याद हो पंजाब हैड 0 लॉसेस इन देयर फर्स्ट 7 मैचेस. दे वर रैंक 1 विद 13 पॉइंट्स एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग कि पंजाब तो फाइनल खेलेगी एंड ड्यूरिंग दैट पॉइंट KKR हैड 0 विंस इन देयर फर्स्ट 6 मैचेस एंड दे वर बॉटम रैंक 10th विद जस्ट 1 पॉइंट. और आज 21 मई अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ पंजाब स्टिल हैव 13 पॉइंट्स एंड दे आर रैंक 5th with back-to-back 6 losses for them. And look at KKR. They are also now at 13 points and they are ranked 6th with 6 wins out of the 7 games back-to-back. I think that's why they say cricket is a game of uncertainties and no one can predict what's in store. So for full breakdown of these matches, watch me with Santosh and Neil on Musti AVI every Monday and Friday at 8:30 p.m. Go to the Musti AVI tab on our app and watch all episodes anytime, anywhere. मैं हूँ जितेश और हम कल फिर मिलेंगे 7 बजे with more masala, more cricket and more IPL action only on Radio Musti 24/7 Live. IPL देखते रहो.
0: The Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hey, hi! Show के थर्ड एंड द लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस आवर इज ऑल अबाउट वेट व्हाट? ऐसी वाली खबरें, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसी जो इंसानियत पर, ह्यूमैनिटी पर, असली खुशी पर आपका विश्वास वापस से कायम करती है। सो आप सभी का वेलकम इस्तकबाल शो के थर्ड एंड द लास्ट आवर में। कभी कभी ना इंटरनेट पर, आजकल तो हर वक्त ही हम देखते हैं, ओपन करते हैं इंटरनेट पर, कोई ग्लैमरस वीडियो जो है वायरल नहीं होती है, अक्सर होती है पर कभी कभी नहीं होती है। क्या वायरल होता है? एक इंसान की असली खुशी वायरल हो जाती है। एक ऐसा ही वीडियो है रिसेंटली एक फार्मर का, महीनों की मेहनत के बाद। आप समझ सकते हैं, किसान किसी भी देश में हो, किसान की असली खुशी होती है उसकी लगाई हुई जो फसल है वो अच्छे से उपजे, उसमें उसको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने को मिले। तो महीनों की मेहनत के बाद जब फाइनली हार्वेस्ट शुरू हुआ, वो किसान खुशी के मारे खेत में नाच रहा है, डांस कर रहा है, उछल रहा है एंड इसका वीडियो वायरल है। कोई स्टेज नहीं है, कोई स्पॉटलाइट नहीं है, सिर्फ मेहनत है। यानी इट्स लाइक डांस लाइक नोबडी इज वॉचिंग, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, उसकी मेहनत, उसका सेटिस्फैक्शन। ऑनेस्टली वो जो खुशी है, वो जो स्माइल है ना, उसमें एक सुकून था जो शायद किसी भी कॉर्पोरेट बोनस में आपको कभी नहीं मिलेगा। हम सिटी लाइफ में ना रिजल्ट को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फार्मर्स हमेशा हमको याद दिलाते हैं कि असली सेलिब्रेशन किसका नाम है? पेशेंस का नाम है। रोज का हार्डवर्क, रोज बिना गारंटी। एक दिन में कोई फसल उगती नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद भी ये इंडिया में कहीं पर भी द वेदर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। और फार्मर्स इंडिया में स्पेशली, जो वीडियो है वो इंडिया का है, इंडिया में फार्मर्स अभी भी 75-80% फार्मर्स जो है वो नेचुरल सीजन, मॉनसून रेन्स, इन पर डिपेंड करता है। कभी आंधी कभी बरसात, आजकल थिंग्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ऐसे में जब इसकी फसल पूरी तरह से उपजी बनी और कटाई का वक्त आया, हार्वेस्टिंग का वक्त आया, आप समझ सकते कितनी खुशी हुई होगी। सो एक थॉट है जो बहुत ही सिंपल है कि जब मेहनत दिल से होती है ना, तो छोटी सी जीत भी आपको एकदम फेस्टिवल लगती है, और इसके लिए तो वाकई में फेस्टिवल ही है।
2: धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा।
1: लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: हैव यू एवर नोटिस्ड, कभी सोचा है कि स्कूल का एक एम्बैरेसिंग मोमेंट आपको क्रिस्टल क्लियर क्यों याद है आज तक? नहीं, लेकिन अगर किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया रिसेंटली, वो धीरे धीरे ब्लर हो जाता है, भूल जाते हो आप 2-4 दिन बाद, आपको अच्छा हाँ कहा तो था, लेकिन वो एम्बैरेसिंग मोमेंट सालों साल आपको याद रहता है। बचपन का भी एम्बैरेसमेंट आपको पूरी जिंदगी याद रहता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेंज। नो, नॉट स्ट्रेंज। हमारा ब्रेन ना कभी कभी अदाएं बड़े फंके कर है नौटंकी, ये ब्रेन बड़ा ड्रामा क्वीन है जी। एक इंसल्ट को इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरह लाइफ टाइम के लिए सेव करता है, और कॉम्प्लीमेंट्स को 30 डेज का ट्रायल वर्जन बना के जुप करके निकाल देता है, डिलीट। रिसर्चर्स भी कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन ना नेगेटिव चीजों को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, इसीलिए एक तुमसे नहीं होगा यार, हमें पूरा जिंदगी याद रहता है। पर

0: मुक्का मारने के लिए बड़े याद रहनी चाहिए चीजें ऐसी.
1: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
2: Check it out.

0: की बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हे हाय सिंगापुर, ओके इमेजिन दिस, आप रात को कैजुअली आसमान देख रहे हो। हाँ मुझे पता है वक्त कम मिलता है, बट स्टिल इमेजिन करो ना यार, आप आसमान देख रहे हो, सडनली एक ब्राइट ग्लोइंग ऑब्जेक्ट फुल स्पीड में एटमॉस्फेयर को कट करते हुए निकल गया, ज़ूप आई ऐसे। अब नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन क्या होता है? एलियन, सेकंड वीडियो बनाओ जल्दी, हाँ यूएफओ, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा एक इनसेन विजुअल नासा ने रिसेंटली शेयर किया है। एक ब्राइट सा ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में स्ट्रीक करता हुआ दिखा, यस ग्लोइंग टेल के साथ, लाइक स्ट्रेट आउट ऑफ अ साईफाई मूवी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ये लाइकली कोई स्पेस डेब्री या कोई सैटेलाइट फ्रेगमेंट होगा जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में री एंटर करते वक्त जो है वो बर्न हो गया यूजुअली। अब देखो क्या है ना, स्पेस हमें रोज याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं, पर क्यूरियोसिटी वो इनफाइनाइट है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। Sometimes I really think हम कितने छोटे हैं यार, हम कितने छोटे हैं। कभी नासा के वीडियोस इन गूगल पे जाके देखो तो लगता कौन है हम, क्या है हम। एनीवे सो कभी कभी ऊपर देखा करो, लाइफ के सारे आंसर्स स्क्रीन पे नहीं मिलते हैं।
2: जी यार,

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: जवाबों से याद आया, सवाल जवाब का हिसाब किताब रखने का जिम्मा किसका होता है? मार्च साहब का। यू नो, इंडिया में मास्टर साहब को, टीचर को प्यार से लोग मार्च साहब कहते हैं, मार्च साहब। तो कभी कभी लाइफ में एक छोटी सी चीज जो होती है ना, आपकी पूरी सोच को बदल सकती है। जैसे एक बच्चे के लिए उसकी फर्स्ट फ्लाइट, किसी के लिए भी, पर बच्चों के लिए स्पेशल होती है। गवर्नमेंट स्कूल का एक स्टूडेंट आप सोचो, और जो प्लेन को सिर्फ आसमान में देखता है, मैंने कहा ना कई सवालों के जवाब आसमान में मिलते हैं, उसके सवाल का, उसका एक सवाल रहेगा, कब मैं बैठूंगी इसमें या कब मैं बैठूंगा इसमें। उसका जवाब उसको मिला। एक दिन उसके टीचर ने कहा 550 से ऊपर स्कोर करो और मैं तुम्हें फ्लाइट पर लेकर जाऊंगा। एंड उस टीचर ने उसका प्रॉमिस पूरा किया। इंडिया के हैदराबाद में एक हेडमास्टर ने अपने खुद के पैसे से एक एसएससी टॉपर को उसकी फर्स्ट फ्लाइट करवाई। आंध्र प्रदेश में भी एक बार एक टीचर एक बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को फ्लाइट पर ले जाने का जो वादा है उसको पूरा किया और अपना प्रॉमिस निभाया। नो स्पॉन्सरशिप, नो कैमरा स्टंट, बस एक टीचर जो मार्क्स से ज्यादा माइंडसेट बदलना चाहता है या बदलना चाहता था। बिकॉज समटाइम्स एजुकेशन सिर्फ किताबों से नहीं होती है, कभी कभी ना किसी बच्चे को ये फील करवाना बहुत जरूरी होता है कि तुम भी बड़े सपने डिजर्व करते हो। यस, क्योंकि अगर आपने उसकी इंसल्ट की ना तो वो उसको जिंदगी भर याद रखेगा। ऑन दिस वेरी पॉजिटिव नोट, मुग्धा सेज यू बाय बाय, टेक केयर। जी हाँ, शो खत्म हो गया, आपको लगा नहीं ना, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपसे कहा नहीं, हो जाने का वक्त आ गया, देखा दिमाग ऐसे काम करता है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से यू बाय बाय, मुलाकात करेंगे अगले शो में बहुत सी बातों के साथ, बहुत सी अमेजिंग गानों के साथ, पर फिलहाल के लिए टेक केयर।

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। लास्ट फ्यू वीक्स आप जानते हैं इतना ब्यूटिफुल समथिंग हैज बीन हैपनिंग। What started as a radio show, धीरे धीरे एक ऐसी जगह बन गया है जहां पर लोग अपने आप ही अपना दिल हमारे सामने खोल रहे हैं। Dear Masti, दिल से। Because sometimes रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: हमने सोचा था कुछ लेटर्स आएंगे, ऑनेस्टली हम इतनी ऑनेस्टी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे।
0: लोगों ने हमको लिखा है, जी हाँ, आप सभी ने हमको लिखा है अबाउट एंजाइटी, अबाउट हार्ट ब्रेक, फैमिली प्रेशर, लोनलीनेस, ट्रस्ट इश्यूज, करियर कंफ्यूजन। और हर हफ्ते एक बात क्लियर होती जा रही है, पीपल डोंट जस्ट वांट आंसर्स, दे वांट टू बी हर्ड। और आज के लेटर्स भी बहुत रियल हैं। किसी का सवाल है, डू आई रियली वॉन्ट टू नो अबाउट माई पार्टनर्स पास्ट। कोई कन्फ्यूज है कि क्या मुझे अभी, शुड आई हैव अ बेबी नाउ या वेट करना बेटर है। और किसी ने लिखा है अबाउट कॉन्स्टेंट फाइट्स इन अ रिलेशनशिप, जहां प्यार तो है बट पीस जरा मिसिंग है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बिकॉज लाइफ में ब्लैक एंड व्हाइट आंसर्स बहुत कम होते हैं। कभी इमोशंस और लॉजिक फाइट करते हैं, कभी हार्ट और टाइमिंग। तो अगर आप भी किसी कंफ्यूजन, किसी इमोशनल क्रॉस रोड या किसी अनसेड फीलिंग के साथ जी रहे हैं, तो राइट टू अस, इट्स डियर मस्ती, दिल से, जहां हम बिल्कुल जज नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज समटाइम्स कहते हैं ना हमारा वो फेवरेट वाला लाइन, रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको उन लोगों से ज्यादा समझ लेता है जो रोज आपके आसपास होते हैं। मैं हूं रेणुका, पहचान तो गए होंगे आप अब तक। और चलिए शुरू करते हैं आज की पहली चिट्ठी बिल्कुल इस गाने के उस पार। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू डियर मस्ती, दिल से।
2: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
3: तुमको लेकर
2: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पे ले चलो।
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू

0: तो चलिए उन गानों के इस पार इंतजार आपका कर रही है रेणुका। दिस इज डियर मस्ती दिल से और आप हैं हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। नो फिल्टर्स नो जजमेंट जस्ट योर लेटर्स डियर मस्ती दिल से। और ये चिट्ठी बहुत ही रियल है और बहुत ही खास है मेरे लिए। इनका कहना है, हाय डियर मस्ती दिल से, आई हैव बीन इन सिंगापुर 8 साल हो गए हैं। फ्रॉम द आउटसाइड पीपल थिंक लाइफ हियर इज सॉर्टेड, स्टेबल कंट्री, गुड स्कूल्स, क्लीन लाइफ, लेकिन ऑनेस्टली बहुत थकावट हो रही है। आई एम ऑन एन एम्प्लॉयमेंट पास, माई वाइफ इज करंटली नॉट वर्किंग क्योंकि वो हमारे बेटे का ध्यान रखती है जो यहाँ पढ़ रहा है। एवरी मंथ बाय द टाइम रेंट, स्कूल एक्सपेंसेस, ग्रोसरीज, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, बेसिक बिल्स आर पेड, देर इज बेयरली एनीथिंग लेफ्ट फ्रॉम माई सैलरी। वी आर नॉट लिविंग लग्जूरियसली एट ऑल, बट स्टिल इट फील्स लाइक वी आर ओनली सर्वाइविंग। द बिगर प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट इवन एन्जॉय माई जॉब एनी मोर। द प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। Every restructuring announcement or manager meeting gives me anxiety. I keep thinking, what if I lose this job? One bad quarter and our entire life can collapse. Sometimes I feel like resigning and taking a break, but then fear kicks in immediately. लोगों का कहना है कि इंडिया वापस चले जाओ अगर इतना स्ट्रेस है, बट आफ्टर स्पेंडिंग ईयर्स हियर, सिंगापुर फील्स लाइक होम नाउ। माई चाइल्ड इज सेटल्ड हियर, आर रूटीन इज हियर, एंड ऑनेस्टली मुझे ये भी नहीं पता अगर मैं दोबारा से सब कुछ रीस्टार्ट कर सकता हूँ कहीं और। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो डोंट सी अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर विद द स्ट्रेस एंड अनसर्टनटी। आई फील स्टक बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हैप्पीनेस। एम आई बींग अनग्रेटफुल? Should I continue for stability even if I am unhappy, or should I take a risk before burnout affects my health and family life? Would really like to hear your thoughts and experiences on this. Confused, tired and worried in Singapore. ओके, सो वी गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। ये सवाल जो है आपका, इतना बता सकती हूँ कि सिर्फ आपका अकेले का सवाल नहीं है, हम में से बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी एक टाइम पर इस देश में आए थे, एम्प्लॉयमेंट पास पर आए थे, और फिर वक्त गुजरता चला गया और हालात बदलते चले गए। तो ये नहीं कहूँगी कि सबके हालात बेहतर होकर ही बदलते हैं, कुछ नहीं भी होता है। तो झूठी आपको मैं बिल्कुल सांत्वना नहीं दूंगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, वापस आके आपके इस सवाल पर पूरा गौर फरमाएंगे। ठीक है, ऑन रेडियो मस्ती, दिस इज डियर मस्ती दिल से।
1: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.

0: रेडियो मस्ती 947 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा kg मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी।
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
4: क्या जी?
5: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
4: वाह जी, क्या बात जी।
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर आप जुड़े हैं रेणुका के साथ इस समय एंड हमारा शो चल रहा है आपका और हमारा वो धीरे धीरे इतना दिल तक पहुंचने वाला शो कि बहुत ही पॉपुलर होता चला जा रहा है। आप सभी जुड़ने लगे हैं इसमें, लिखने लगे हैं, हमसे बात करने लगे हैं। इट्स कॉल्ड डियर मस्ती दिल से एंड ऑन रेडियो मस्ती। अभी अभी हमने एक सवाल पढ़ा था थोड़ा सा इस गाने के इस ब्रेक से पहले हमने पढ़ा था अबाउट दिस लवली लिसनर हुज रिटन टू अस। ही इज एन एम्प्लॉयमेंट पास होल्डर इन सिंगापुर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द वे सिंगापुर लाइफ इज एंड इस समय इस असमंजस में कि क्या करूं मैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप इस तरह से फील कर रहे हैं जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, यू आर नॉट अलोन। बहुत से लोग सिंगापुर में साइलेंटली दे आर कैरिंग द एग्जैक्ट प्रेशर, especially expats and EP holders. The fear is not just about a job, it's about housing, children, visas, identity, family ki stability and the life jo aapne banayi hai over the years. The problem is that many people compare salaries, lekin koi bhi honestly emotional cost of living ke bare mein baat nahi karta. You don't make a drastic decision when you are emotionally exhausted. Burnout can make even small problems look permanent. To अपने से ये मत पूछिए शुड आई क्विट टुमारो, मे बी अपने से ये पूछिए कि क्या 6-12 महीने का मैं एक प्लान बना सकता हूँ, क्या मेरी वाइफ स्लोली कैन शी रीस्टार्ट वर्किंग पार्ट टाइम या रिमोटली, क्या हम 1-2 ऐसे मेजर वाले खर्चे टेम्प्ररली रिड्यूस कर सकते हैं, या क्या आप एक और नौकरी ढूंढ सकते हैं बिफोर रिजाइनिंग, या क्या आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपने हेल्थ और मेंटल पीस को बिफोर थिंग्स गेट वर्स। कभी कभी आंसर इमीडिएटली छोड़ना सिंगापुर को नहीं होता, समटाइम्स इट्स नॉट स्टेइंग एंडलेसली ईदर, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शंस धीरे धीरे ताकि जो आपका फियर है, जो डर है, इट डजंट कंट्रोल एवरी डिसीजन। सो रिमेंबर, योर चाइल्ड डज नॉट ओनली नीड अ सक्सेसफुल पेरेंट, योर चाइल्ड नीड्स अ मेंटली प्रेजेंट एंड इमोशनली हेल्दी पेरेंट एवरी टाइम। And to everyone listening today, अपने आप को या आसपास के अपने लोगों को जज करना बंद कीजिए। People who look settled from outside may be very unsettled inside. Invisible stress होता है जो हम सब कैरी करते हैं कहीं ना कहीं। जरा सोचिए, changing careers, financial stress है, visa anxiety है, हर तरह से पूरी शुरुआत दोबारा करना किसी देश में जाकर आसान नहीं होता। So, आए तो हम थे बहुत से सपने लेकर, वो कितने सपने हमारे पूरे होते हैं वो तो हमारी किस्मत है, लेकिन नहीं होते तो दिल मत तोड़िए अपना।
1: बस इतना सा ख्वाब है।
0: सुने साथ साथ ये गाना, ख्वाब ही तो था जिसे लेकर हम आए थे इस देश में।
2: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Huma, huma, huma, huma, huma, huma, huma, huma, huma.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Dear Masti, दिल से, because sometimes रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
3: कितना अच्छा होता ना कि हम अपने अंदर ना कंट्रोल शिफ्ट डिलीट का एक ऑप्शन रखते, पुरानी यादों को खटाक से डिलीट कर देते, कुछ भी बुरा नहीं लगता। कितना अच्छा होता, पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हम इंसान हैं और हम पुरानी बातों को सोचकर हंसते भी हैं और रोते भी हैं। फिलहाल मैं आरजे नुपुर डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ है, एंड आगे बढ़ने के साथ साथ अभी जो मेरे हाथों में खत आ चुका है उसमें भी कुछ पुरानी बातों से जुड़ा हुआ किस्सा नजर आ रहा है। सो अभी जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और अभी मेरी रिलेशनशिप बहुत ही ताज़ी सी है, अभी हमें ज़्यादा वक्त नहीं हुआ एक दूसरे को डेट करते हुए। बट मेरे अंदर बार बार एक सवाल आ रहा है कि क्या मुझे मेरे पार्टनर के पास्ट के बारे में जानना चाहिए या फिर इंतज़ार करना चाहिए कि वो खुद ही ग्रेजुअली मुझे बता दे। सो व्हाट डू यू थिंक, पूछ लूँ या नहीं? अच्छा हुआ आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया अपने पार्टनर से पूछने से पहले, राइट? एनीवेज, एक बात है कि देखो, पास्ट जानना गलत नहीं है, लेकिन पास्ट में जीना बहुत खराब हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ प्रेजेंट में नहीं जी रहा है, वो अपनी पास्ट की यादों में जी रहा है, या आपको अपने पुराने पार्टनर से बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहा है, या आप अपने पास्ट से उसे कंपेयर कर रहे हैं, तो एक दूसरे को पास्ट के बारे में बताइए। अदरवाइज आप लोग मूव ऑन कर सकते हो यार, लाइफ का मतलब ही मूव ऑन होता है। और हाँ, कभी ऐसे फुर्सत के पलों में बैठो, शाम को डिनर कर रहे हो या फिर कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो बातों बातों में बता दो कि मेरा जो पहले वाला था ना, उसके अंदर ये बात नहीं थी जो तुम्हारे अंदर है। आप इस तरह से प्यार से ग्रेजुअली अपने पास्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दोगे ना, तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, और क्या पता आप जो जानना चाहती हो या चाहते हो वो आपको सामने से पता चल जाए। हाँ, तो ऐसे कुरेदना नहीं है, इस गाने की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करना है।
4: जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा।
3: बिल्कुल, ऐसे खूबसूरत गाने रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर डियर मस्ती दिल से शो पे चल रहे हैं। हम सभी आरजेस आपसे रूबरू बातें कर रहे हैं

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जहां हम बात करते हैं आपके दिल की और आपके दिल की बातों की थ्रू योर लेटर्स एंड थॉट्स एंड योर इमोशंस। और अब वक्त है आपकी अंतरा का कि वो पढ़े अपना ये लेटर। डियर मस्ती, क्या शादी ही लाइफ में सब कुछ होती है? Why do I have to follow a certain norm and rule book of the society? शादी कर लो उम्र निकल जाएगी, यही सुनने को मिल रहा है आजकल हर तरफ से। एंड ऑनेस्टली जितना भी लोग बोले उतना ही मेरा मन नहीं करता। मैं रेडी नहीं हूँ उस चीज के लिए। करियर में अभी बहुत कुछ करना है, बहुत ट्रैवल करना है, दुनिया देखनी है, नए लोगों से मिलना है। आई वॉन्ट टू डेट मोर बिफोर आई गेट टाइड इन टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये तो ऐसा लग रहा है कि हर यूथ की आवाज है कि हमें क्यों बताया जा रहा है कि कब क्या करना है। Why do we have to follow a manual? So, my dear listener, सबसे पहले तो there is nothing, of course, wrong with feeling this way. और मुझे लगता है आजकल हर कोई ही ये feel कर रहा है, and I'm glad that people are talking, you know, openly about it. देखिए, शादी beautiful हो सकती है, but I think वो तभी होता है जब वो आपकी choice हो, and not just सोसाइटी का टाइमलाइन। वो एक दौर था जब ये सारी चीजें चल जाती थी, क्योंकि वो दौर अलग था एंड थिंग्स हैड वर्क्ड आउट दैट वे एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट अब वक्त अलग है, बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है, बहुत कुछ इवॉल्व कर चुका है माइंडसेट, एंड दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। एंड ऑनेस्टली अगर आपको लगता है कि आपको अभी फिलहाल खुद को एक्सप्लोर करना है, करियर पे फोकस करना है, ट्रैवल करना है, अपनी इंडिविजुअलिटी जो है उसको समझना है, then maybe this is exactly what your heart needs right now. उसमें कोई भी guilt नहीं होना चाहिए कि क्योंकि ये जो society का noise है ना, वो हमेशा से ही loud रहा है कि वो ना चाहते ही नहीं है कि कभी कभी हम अपनी आवाज जो है वो दिल की सुने। I think it's like coming मेरे भी दिल के बहुत अंदर से ये सारी की सारी बातें। But at the end of the day, आपको अपनी life जीनी है, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करते रहना है सबको। एंड यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है भागना और रेडी ना होना, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। सो इट्स नॉट दैट यू आर नॉट सेइंग नेवर, एंड इवन इफ यू आर, इट हैज टू बी योर कॉल कंप्लीटली। अभी इफ यू आर सेइंग नॉट येट, मुझे लगता है इट्स वेरी ब्रेव एंड ऑनेस्ट ऑफ यू टू ए एडमिट इट एंड जस्ट टेल एवरीबडी अराउंड यू। या Take your time, grow, travel, explore, meet people. सबसे important, understand yourself. Because the better you know yourself, the better choices you make for the future. Hope my सवाल, आपके सवाल का जवाब जो है, helps you out. On Radio Masti 24/7 Live, let's move on.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। जी हाँ, अभी बारी है आपकी अंतरा की टू टेक यू थ्रू द नेक्स्ट लेटर। अगर आपने पहली बार ट्यून इन किया है तो लेट मी टेल यू क्विकली दैट हमने जो है यहाँ पर ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव एक सेफ स्पेस ओपन करने का सोचा, जिसको हम बुलाते हैं डियर मस्ती दिल से, जहाँ पर लोग हमें जो है चिट्ठियाँ लेकर भेजते हैं, यानी कि ई मेल्स पे या फिर मैसेजेस से, और हम कभी भी उनका नाम नहीं लेते। वी जस्ट रीड द लेटर्स एंड वी जस्ट टॉक अबाउट इट एंड गिव आवर पर्सपेक्टिव, आवर व्यूज ऑन इट। आल्सो आई वुड लाइक टू से दैट कभी आपको लगे कि आपको उस बारे में कुछ कहना है तो फील फ्री टू डू सो 9158 5183। वेल, हियर वी गो। तो हमारी चिट्ठी ये कहती है दैट डियर मस्ती, मैं और मेरे लाइफ पार्टनर के बीच में वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर एक चीज है जो मुझे हमेशा बॉदर करती है। हाउ मच इज इनफ इन अ रिलेशनशिप? घर का, बाहर का, फैमिली का, ऑलमोस्ट हर चीज का ख्याल मैं रखती हूँ एंड आई फील एग्जॉस्टेड। सिर्फ और सिर्फ उसको खुश रखने के चक्कर में फिर भी लगता है कि ही इज नेवर कंटेंट। और अक्सर झगड़ों में ये सुनने को मिलता है दैट तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, ये इनफ नहीं है। आई डोंट लाइक इट। व्हाट वुड यू हैव डन? So my dear listener, सबसे पहले तो आई एम ग्लैड दैट यू एक्नॉलेज्ड दैट आप एग्जॉस्टेड हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ये एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं, बस करते चले जाते हैं। कभी कभी रिलेशनशिप्स में ना हम इतना ज्यादा गिव करने लगते हैं कि धीरे धीरे हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं, और फिर एक दिन बॉडी थक जाती है, माइंड इरिटेट हो जाता है, और दिल ऐसे ही पूछता है कि मेरे लिए कौन कर रहा है। देखिए, लव और एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिलेशनशिप में, बट कॉन्स्टेंटली प्रूविंग योर सेल्फ, या दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग। अगर आपको हर वक्त ये फील हो रहा है कि आपको इनफ होने के लिए और कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, तो शायद प्रॉब्लम सिर्फ एफर्ट की नहीं है, कम्युनिकेशन की भी है। और इसीलिए मुझे लगता है दैट यू नीड टू टॉक इट आउट, किसी झगड़े में नहीं, कभी गुस्से में नहीं, नॉट वाइल प्रूविंग पॉइंट्स, बट मे बी अ काम मोमेंट विथ कंप्लीट ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। उन्हें ये बताइए कि आप रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है सिर्फ आप ही सब कुछ फील कर रही हैं, आप ही सब कुछ निभा रही हैं, और जब बार बार कमी सुनाई देती है तो इमोशनली आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही हैं। कभी कभी क्या होता है ना, सामने वाले को ये रियलाइज ही नहीं होता है कि उनके वर्ड्स कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे मे बी स्पीकिंग फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, बट द अदर पर्सन इज जस्ट एब्जॉर्बिंग इट इमोशनली। एक और बात, हेल्दी रिलेशनशिप में सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि घर का काम कौन कर रहा है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन हैंडल कर रहा है, इट इज ऑल्सो अबाउट दैट डू यू फील इमोशनली सेफ विद ईच अदर। एंड ऑल्सो आपकी वैल्यू सिर्फ इस बात से डिसाइड तो बिल्कुल भी नहीं करती होती है कि आप कितना करते हो। समटाइम्स डूइंग लेस एंड कम्युनिकेटिंग मोर कैन हील अ मच डीपर थिंग्स। सो इंस्टेंट ऑफ साइलेंटली कैरिंग ऑल ऑफ दिस इनसाइड यू, मे बी दिस इज द मोमेंट टू सिट डाउन and make him also sit down and say that I love us, but I also need us to understand each other better, because relationships are just not about one person constantly adjusting, they are about two people continuously understanding each other. Hope this helps. Sunte rahiye dear masti dil se.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: यू नो व्हाट, हम मूवीज से इतना ज्यादा इंस्पायर हो चुके हैं कि गलत एग्जाम्पल सेट करते जा रहे हैं। अच्छी चीजें कभी नहीं सीखते, गलत गलत सीखते जा रहे हैं। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर, डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ। एंड डेफिनेटली हम सभी आरजेस के हाथों में आपके भेजे हुए लेटर्स हैं, आपकी बातें हैं, आपके सवाल हैं। और अभी जो मेरे हाथ में लेटर है उसमें लिखा हुआ है कि क्या हर स्ट्रांग रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि मेरी रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और मैंने कहीं सुना था, अपने किसी दोस्त से पूछा था, तो मुझे पता चला कि जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार होती है, समथिंग लाइक दैट। और मैं इन सारी लड़ाइयों को बहुत ज़्यादा कॉमन भी लेने लगी हूँ, क्योंकि लड़ाई हो जाना बहुत ही आसान है, लेकिन लड़ाई के बाद दोबारा बातें करना ये बहुत मुश्किल है। देखो, लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती हैं, फाइट्स होना प्रॉब्लम नहीं है, हर बात पर चुप रहना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप दोनों को एक दूसरे का कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया, आप एक दूसरे को बताकर लड़कर उसे ठीक करवा दे रहे हैं, तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप की एडवाइस होती है। लेकिन अगर आपने शाम को 5 बजे किसी टॉपिक पर लड़ाई करी और रात के 9 बजे जब आप सोने भी जा रहे हैं ना, तो भी आप एक दूसरे से चेहरा नहीं मिला रहे हैं, दैट इज मोर दिक्कत। हाँ, तो आपको लड़ाई करनी है, थोड़ी सी देर में अपना गुस्सा शांत करना है, फिर दोबारा से अपनी रिलेशनशिप में आप जैसे थे वैसा बन जाना है। ऐसे रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ती है। सो मेरी बातों का ध्यान रखिएगा, वरना माइंड दैट। चलिए इस गाने को एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, मैं आज इन पर डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ बनी हुई है।
2: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमें रेड फ्लैग्स नजर आते हैं, बट somehow हमारे इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं दैट वी जस्ट चूज टू इग्नोर इट, क्योंकि हमें लगता है कि भाई हो सकता है कि ये वापस से नहीं हो, क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में। यही सारी चीजें मेरे अभी जहन में चल रही है क्योंकि अगली चिट्ठी कुछ इसी तरह की है और इसी बारे में कुछ हमसे कहना चाह रही है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूं अंतराम के साथ, आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से। और चलिए अगली चिट्ठी की ओर जो है बिल्कुल बढ़ जाते हैं। डियर मस्ती, यू ऑलवेज मेक्स फन ऑफ मी, इट हैज स्लोली बिकम अ हैबिट नाउ, और जब मैं कन्फ्रंट करती हूँ समहाउ आई बिकम द बैड पर्सन। फिर बोल दिया जाता है दैट इट वॉज जस्ट अ जोक, तुम इतना क्यों सीरियसली ले रही हो, बट ऑनेस्टली इट हर्ट्स। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस सिचुएशन विद अस। यस, आई विल थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर शेयरिंग योर, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सच कहूं, कई बार रिलेशनशिप्स में ना रेड फ्लैग्स हमेशा ड्रामेटिक तरीके से नहीं आते हैं, कभी कभी वो जोक्स के फॉर्म में आते हैं, टॉन्ट्स के फॉर्म में, मौकरी के फॉर्म में आते हैं। एंड बिकॉज लव एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, हम हर बार ही अपने आप को ऐसा कुछ समझा देते हैं कि चलो अगली बार नहीं होगा, उसका इंटेंशन बुरा नहीं होगा, मे बी आई एम ओनली ओवर थिंकिंग।

0: और वहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि एक साइड पे होता है हर्ट, दूसरा साइड पे होता है अटैचमेंट। एंड अटैचमेंट बहुत पावरफुल होती है, इट मेक्स अस इग्नोर थिंग्स, डिले द रिएक्शंस, एंड कभी कभी अपनी खुद की फीलिंग्स को भी हम डाउट करने लगते हैं। पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, रेड फ्लैग्स को नोटिस कर पाना। एंड इफ कॉन्स्टेंटली यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल अबाउट समथिंग एंड ओनली थिंकिंग अबाउट दैट दिस इज समथिंग व्हिच आई एम नॉट लाइकिंग इट, then that's definitely a red flag and you need to act about it. But then again, I think I just need some time to think over it and tell you what I think about it. So let's go for a musical break and let me come back and let's talk about this on Radio Masti 24/7 live. Ye hai Dear Masti Dil Se.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है।
1: तुमको लेकर
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
2: मुझे जान पहले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू
3: रात अकेली है।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक एवरीवन, आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। भाई कुछ देर पहले हमने एक लेटर पढ़ा था जहाँ पे हमारे लिसनर ने हमारे साथ शेयर किया दैट डियर मस्ती ही ऑलवेज मेक्स फन ऑफ मी और जब मैं कन्फ्रंट करती हूँ तो मैं ही बुरी बन जाती हूँ, फिर बोल दिया जाता है इट वॉज जस्ट अ जोक बट ऑनेस्टली इट हर्ट्स। सो माई डियर लिसनर, सबसे पहले तो अगर कोई चीज आपको बार बार हर्ट कर रही है तो उस फीलिंग को बिल्कुल लाइटली मत दीजिए। कभी कभी हम रिलेशनशिप्स में इतना ज्यादा एडजस्ट कर जाते हैं कि अपने हर्ट को हम नॉर्मलाइज कर देते हैं और फिर एक वक्त आता है कि हम खुद ही कंफ्यूज जाते हैं कि क्या वाकई में मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, रिपीटेड डिसरेस्पेक्ट रैप्ड एज अ ह्यूमर, इट्स अ नो नो। और अगर हर कन्फ्रंटेशन के बाद कॉन्वर्सेशन जो है सॉल्व होने की जगह आपको ही गिल्टी फील कराया जा रहा है एंड इफ यू आर फीलिंग लाइक दैट, तो वो भी एक पैटर्न

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Dear Masti, दिल से, because sometimes रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। खैर बीच बीच में ये बाकी सब आ जाते हैं तो मैं रह जाती हूँ पीछे पीछे, लेकिन छोड़ के नहीं गई थी फिलहाल के लिए। हेलो एंड वंस अगेन ऑन Dear Masti दिल से, रेणुका विद यू। Dear Masti, दिल से, because sometimes रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। तो भाई, इस अनजाने इंसान ने आपसे पिछले हफ्ते एक सवाल पूछा था और वो था, What is that one thing which is a big no for you? मतलब बात सुनते ही आप कहते हैं, नहीं ये कभी नहीं हो सकता over my dead body. इस तरह का क्या है वो सवाल? तो आप में से बड़े सारे लोगों का जवाब आया, लेकिन एक ऐसा जवाब honestly जो हमको बहुत ही पसंद आया और relatable भी है। आपने लिखा, माय बिगेस्ट नो, डिसरिस्पेक्ट इन एनी फॉर्म। आई कैन टॉलरेट बैड डेज, आई कैन टॉलरेट मूड स्विंग्स, आई कैन इवन टॉलरेट द ओकेजनल बैड जोक दैट डजंट लैंड वेल, लेकिन द मोमेंट एक डिसरिस्पेक्ट होती है, एक लाइन क्रॉस होती है, वेदर इन वर्ड्स, टोन, एटीट्यूड या बिहेवियर, दैट्स वेयर आई ड्रॉ द लाइन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में हर चीज सॉर्ट हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकती हैं, आर्ग्यूमेंट्स कैन कूल डाउन, पीपल कैन इवन ग्रो एंड चेंज, बट डिसरिस्पेक्ट चेंजेस द वे यू सी समवन फॉरएवर। और एक बार वो लाइन क्रॉस हो जाए तो बहुत ही मुश्किल होती है टू गो बैक टू व्हाट इट वाज। सो नाउ आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। जी हाँ, ये बात है, सही है कि नहीं है? आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू विल अग्री दैट डिसरिस्पेक्ट एंड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो है ना चीज़ें, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जिंदगी में। शुरुआत में हम किसी को ढील दे भी दें, धीरे धीरे आगे जाके हमें लगता है यार हमने बहुत गलत किया, क्योंकि वापस रिस्पेक्ट अर्न करना इज नॉट ईजी। सो रिमेंबर, आज का भी हमारा सवाल एक ही है, चाहे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे फ्रेंडशिप्स हैं, या ऑफ कोर्स आपकी जॉब की जगह है, कॉर्पोरेट रोल है, या आपके बिजनेस का ऑफिस है, कहीं भी डिसरिस्पेक्ट, वेल द आंसर इज नो नो नो। तो हमारा सवाल इस हफ्ते भी यही है, व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच इज अ बिग नो नो मैटर व्हाट, बताइए हमको। जी हाँ, यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं हम, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और रिमेंबर इसमें कोई पर्सनल बात नहीं है, तो इस बात का जवाब तो आप दे ही सकते हैं। व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच इज अ नो नो फॉर यू नो मैटर व्हाट, आप बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, ऐसी कौन सी बात है?

भाई आज तो मुझे लगता है मेरी किस्मत में बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट पास होल्डर्स, सारे के सारे एक्सपैट्स और सारी की सारी ऑफिस रिलेटेड परेशानियां. अ वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन रेणुका विद यू. ऑफ कोर्स हमारे तीसरे घंटे में आपका स्वागत है. शुरुआत करते हैं इस चिट्ठी से और साथ ही मैं फटाफट जवाब भी दे देती हूँ. नो फिल्टर्स नो जजमेंट जस्ट योर लेटर्स. डियर मस्ती दिल से. हाय डियर मस्ती दिल से टीम, मैं काम कर रही हूँ सिंगापुर में फॉर अ फ्यू इयर्स. ऑन पेपर माय जॉब इज स्टेबल बट ऑनेस्टली आई एम स्ट्रगलिंग विद ऑफिस पॉलिटिक्स. देर आर पीपल इन माई टीम जो हमेशा बेहतरीन काम नहीं करते बट बहुत ही बढ़िया होते हैं एट इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, बिल्डिंग अलायंसेज एंड समटाइम्स इवन टेकिंग क्रेडिट. एंड आई ऑन द अदर हैंड प्रिफर टू स्टे ऑनेस्ट, फोकस्ड एंड जस्ट डू माई वर्क. प्रॉब्लम इज आई फील invisible. My work is not always recognized the way I expect. और अब मुझे confusion है कि क्या मैं भी ये political games खेलना शुरू कर दूँ to survive? Or stay true to myself and risk being sidelined, especially since I am on an employment pass. मैं instability afford नहीं कर सकती. I feel stuck between integrity and survival. Frustrated and confused. All right, तो भाई आपका नाम हम रखते हैं मिस एथिकल. ठीक है. सो मिस एथिकल आप जो कह रही हैं ना और जो आपकी पर्सनालिटी है, आई एम इन लव विद दैट. लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट. लेकिन आप जो भी व्हाटएवर यू गोइंग थ्रू, मेनी पीपल साइलेंटली गो थ्रू, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट हर वर्क प्लेस पर होती है. द अनकंफर्टेबल ट्रूथ इज समटाइम्स विजिबिलिटी मैटर्स एज मच एज परफॉर्मेंस. बट एक डिफरेंस होता है बिटवीन बीइंग पॉलिटिकल एंड बीइंग प्रोफेशनली अवेयर. यू डोंट हैव टू गॉसिप और मैनिपुलेट टू सर्वाइव. लेकिन यू ऑल्सो कैनॉट स्टे कम्प्लीटली इनविजिबल और आपको लगे कि हाँ मेरा काम तो चल ही रहा है, वो ही अपने आप बात कर लेगा. तो शिफ्ट ये है, डोंट चेंज योर वैल्यूज बट चेंज योर विजिबिलिटी स्ट्रैटेजी. कम्युनिकेट कीजिए अपना इम्पैक्ट क्लियरली. आपके मैनेजर को इतना समझ में आना चाहिए कि आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सिर्फ अप्रेजल्स के टाइम नहीं, अदरवाइज भी रेगुलरली उनको पता होनी चाहिए. बिकॉज बिल्ड अ फ्यू जेन्युइन वर्किंग रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन ट्रस्ट. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना जो क्वाइट हार्डवर्क है ना उसको इनविजिबल हार्डवर्क मत बनने दीजिए. क्योंकि वर्क प्लेसेस में लाउडेस्ट पर्सन जीतता नहीं है, इट्स द मोस्ट विजिबल क्रेडिबल वन. And if a system consistently rewards policies over performance, that's also information you need to pay attention to in the long run. Stay honest. Disappear mat hoijiye. Dekhiye, zaruri ye hai ki aapka kaam dikhai de aur aap bhi dikhai de. To isliye kone mein baithkar kaam mat kijiye sirf. That's not enough. That's how today's world is. Corporate life. चलिए इसी के साथ में एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर. इफ यू डू हैव अ फॉलोअप क्वेश्चन आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट. कीप राइटिंग टू अस, इट्स लिसनर एट radiomasti.com.sg. नहीं तो व्हाट्सएप. और हाँ, किसी ने हमसे पूछा कि व्हाट्सएप कैसे करें, आपको पता लग जाएगा हम कौन है. नहीं, आप किसी और के फोन से कीजिए और अपना नाम मत बताइए, हमें कैसे पता कौन हो आप. गुड इवनिंग एंड आई विल टेक अ ब्रेक हियर.

अच्छा, जितने भी लोग यहाँ पे पिछले काफी सालों से रिलेशनशिप में हैं, वो मुझे इस सवाल का जवाब दे कि किसी भी रिलेशनशिप में सालों तक टिकने के लिए प्यार ज्यादा जरूरी होता है या भरोसा? बताइए बताइए। डेफिनेटली भरोसा, अंडरस्टैंडिंग, दोस्ती, बिल्कुल। ये जो प्यार मोहब्बत वाले चोचले हैं ना, ये कुछ ही वक्त में खत्म हो जाते हैं। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपटियार मस्ती दिल से शो पर आपके साथ है। एंड ये जो मोहब्बत है ना, बड़ी बुरी चीज है। एक बार हो जाती है ना तो बस ये भुला ही नहीं भुला पाते हैं हम लोग। हाँ खैर, अभी डियर मस्ती दिल से शो पर मेरे हाथ में जो लेटर है ना, उसमें क्या सवाल है क्या जवाब है ये तो मैं बता दूंगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जिनको पसंद करते हैं उन पर भरोसा तो करते हैं ना? वो पहले होना चाहिए, प्यार बाद में भी होगा तो चलेगा। खैर, जिनका सवाल मेरे पास आया हुआ है, उस खत में लिखा है कि क्या अरेंज मैरिज में प्यार बाद में सच में हो जाता है या फिर कभी नहीं होता? अरेंज मैरिज एक कॉम्प्रोमाइज होता है और फिर हमें एक दूसरे के साथ एनी हाउ रहना पड़ता है। मतलब मैं अरेंज मैरिज के फेवर में या अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन इस डायरेक्शन में सोच रही थी तो मैंने सोचा एक सवाल पूछूं कि क्या सच में अरेंज मैरिज में बाद में प्यार हो जाता है। ये सवाल आपने मुझसे पूछा है, अच्छी बात है, लेकिन आप यही सवाल अपने मॉम एंड डैड से भी पूछ सकते हैं अगर उनकी लव मैरिज नहीं थी तो। बिकॉज अरेंज मैरिज में ना सिर्फ दो लोगों का प्यार नहीं होता है, दो परिवारों का मिलन होता है। और वो जो रिचुअल्स शुरू होते हैं ना, जहां से अरेंज मैरिज फिक्स होनी शुरू होती है, उस पल से आपको पल मिल जाता है कि आप सामने वाले शख्स को पहचान लें। एंड उससे भी खूबसूरत चीज, चलो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप अरेंज मैरिज के डायरेक्शन में सोच रही हैं तो मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगी जो मुझे मेरे घर से पता चली। एंड डेफिनेटली इंडिया में सारे मेरे बिलोंगिंग्स रहते हैं तो वो लोग मुझे हमेशा बताते हैं, गाइड करते हैं कि कभी भी किसी शख्स को पहचानना होना तो उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स, उसके सबसे नियर डियर वंस जो होते हैं ना, उनको देखो। वो इंसान जो है ना, वो उनकी ही परछाई होता है। अगर आपको उनके आसपास वाले बहुत पसंद आ रहे हैं, आप एनी हाउ उन्हें चाहने लगे हैं, ठीक है, तो वो शख्स जो आपका पार्टनर बनने वाला है या बनने वाली है, उसके अंदर भी आपको वो सारी छवि, वो सारी इमेजेस मिलने वाली हैं। तो डर की बात बिल्कुल नहीं है, है ना। सो प्यार से पहले भरोसा ढूंढिएगा और भरोसे के साथ साथ पूरा परिवार कैसा है उस डायरेक्शन पे सोचिए।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा kg मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी।
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
4: क्या जी?
5: जी जी, जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
4: वाजी क्या बात जी।
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
1: एक बात बताइए, अगर आपके पाँव पर चोट लगेगी तो वो बताएगा कौन? आप बताओगे ना? हाँ बिल्कुल, आपका दर्द है आप ही बताओगे। सो हेलो हाय, मैं आरजे नूपुर डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ। और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक दिक्कत देखी है, मैंने सोचा आपको बताती हूँ, जो मैं अब ठीक कर चुकी हूँ, कि अगर मेरे संग कुछ गलत हो रहा है, मतलब मन ही मन में कुछ गलत ख्याल आ रहे हैं, तो मैं किसी को बताती नहीं थी। और वो छोटा सा ख्याल कितना बड़ा होता जाता था बाय द टाइम कि वो घबराहट बन जाता था, है ना? तो ऐसा होता है। तो आपकी दिक्कत, आपकी चोट जितनी छोटी है, वो आप अपने दोस्तों से, अपने डियर वन से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से जितनी जल्दी शेयर करोगे ना, उसका सल्यूशन उतनी जल्दी मिलेगा। और ये जो मॉडर्न जमाना है ना, कि हम लड़कियां बहुत ही ब्रेव होती हैं, हम लड़कियां किसी से डरती नहीं, हम लड़कियों को किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की और लड़के दोनों को ही सबकी ज़रूरत होती है। और आप जैसे ही अपनी लाइफ में किसी पर भी छोटा मोटा इमोशनली डिपेंडेंट होने लगोगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा 30-30% आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सो ट्राई दैट, मन में ग्रजेस मत रखो, शेयर करो। कोई ना मिले तो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर हम सभी आरजेस कर रहे हैं आपका इंतजार।

आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। जी हाँ, अब वक्त है एक और ऑनेस्ट से एक लेटर का। मैं हूँ आपकी अंशरा आपके साथ यहाँ पर, और लेटर कुछ ऐसा कहता है, डियर मस्ती, आई एम ऑलवेज वेरी कॉन्शियस ऑफ हाउ आई लुक। इतना कि बाहर जाना, लोगों से मिलना, सोशलाइज करना भी एक परफॉर्मेंस प्रेशर जैसा फील होने लगा है। जैसे हर वक्त परफेक्ट दिखना है, परफेक्ट लगना है, वरना लोग जज करेंगे। आजकल मुझे इस बात से बहुत एंजाइटी भी होने लगी है। या इट हैपेंस। सो माय डियर लिसनर, सबसे पहले तो आई डोंट थिंक सो यू आर अलोन इन फीलिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। आजकल ऑनेस्टली सोशल मीडिया ने हम सभी को थोड़ा ना सेल्फ कॉन्शियस बना दिया है। इट इंक्लूड्स मी एज वेल कम्प्लीटली। हर जगह फिल्टर्स, पिक्चर परफेक्ट, परफेक्ट बॉडीज, परफेक्ट जिंदगियां, और धीरे धीरे हम नॉर्मल इंसान कम और वॉकिंग परफॉर्मेंस ज्यादा बनने लगे हैं। मुझे याद है मैं भी पहले बहुत ये सोचती थी कि मैं कैसी दिख रही हूँ, लोगों ने ये नोटिस किया होगा क्या, ये आउटफिट ठीक है, ओह यहाँ से नहीं, इस एंगल से नहीं, उस एंगल से नहीं। बट सच कहूँ यार, कभी कभी हम खुद को इतना ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हम मोमेंट को इंजॉय करना ही भूल जाते हैं। एक बात मैंने टाइम के साथ सीखी है, मोस्ट पीपल आर टू बिजी थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स टू नोटिस एवरी टाइनी थिंग अबाउट यू। और जो लोग सिर्फ आउटर अपीयरेंस से किसी को जज करते हैं, ऑनेस्टली उनकी ओपिनियन को इतनी पावर भी नहीं देनी चाहिए। देखिए, टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल थिंग, राइट? ड्रेसिंग अप इज फन, लुकिंग गुड फील्स गुड। बट जब वो प्रेशर बनने लगे, जब आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ अपीयरेंस पे डिपेंड करने लगे, तो फिर थोड़ा सा रुक के खुद को सॉफ्टली एक हग करने की जरूरत होती है। क्योंकि आप सिर्फ एक फेस, एक बॉडी, एक आउटफिट नहीं हो। आपका ह्यूमर, आपकी काइंडनेस, आपकी एनर्जी, योर वाइब, दैट इज ऑल यू। एंड ऑनेस्टली सबसे अट्रैक्टिव लोग वो होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं इन बीइंग देमसेल्व्स। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, प्रेजेंट होना जरूरी है। तो अगली बार आप जब बाहर जाओ, ट्राई दिस, इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ डू आई लुक, आस्क योरसेल्फ हाउ डू आई फील, एंड दैट चेंजेस अ लॉट। एंड प्लीज खुद को इतना मत जज करिए, दुनिया ऑलरेडी उस जॉब के लिए काफी सालों सालों से अप्लाई कर चुकी है। होप दिस हेल्प्स। यह डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: ऑनलाइन.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
1: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
2: Dear Masti, दिल से, because sometimes रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
0: जी हाँ, और इसी के साथ आज का डियर मस्ती दिल से यहीं पे होता है खत्म। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंशा, यहाँ पर फिलहाल आपके साथ। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सच में दिल से थैंक यू उन सभी लोगों को जो अपनी दिल से निकली बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। वी रियली रियली फील ऑनर्ड, सच्ची में। कभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई यू नो हार्ट ब्रेक, कभी फैमिली, कभी सेल्फ डाउट, कभी बस वो फीलिंग्स जिन्हें शायद आपने कभी किसी को शायद प्रॉपरली नहीं बोला हो, बोला भी हो तो शायद किसी ने सुना नहीं हो तो शायद समझा नहीं हो। बट थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस विद ऑल ऑफ दैट। और एक थैंक यू हमारे उन लिसनर्स को जो हर एपिसोड में हर इमोशन हर सिचुएशन के साथ हमारे साथ यूं ही जुड़े रहते हैं, चाहे नुपुर हो, चाहे रेणुका हो या मैं हूँ। हम सब जेन्युइनली यही कोशिश करते हैं कि हर लेटर को पूरा थॉट, पूरी सिंसियरिटी और एम्पैथी के साथ समझें और उसका जवाब दें, क्योंकि कई बार किसी को बस सुन लिया जाना बस उतना ही काफ़ी होता है, नहीं? और अगर आप भी हमें कभी कुछ लिख भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल भेजिए, आप किसी और के नंबर से भेज सकते हैं। नाम लिखना भी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हमें नाम नहीं जानना है। हमने कभी अनाउंस भी नहीं किया है, आपने ये नोटिस किया होगा, किसी का भी नाम हम हमेशा डियर लिसनर के नाम से ही उसको बिल्कुल बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप हमारे लिए बस डियर लिसनर हो इस शो पर। और जैसे आप दूसरों के लेटर्स सुनते हो, वैसे ही ये शो सिचुएशंस का भी तो सफ़र ही है ना, कि लाइफ में क्या होता है और कोई उस सिचुएशन को कैसे फील करता है, कैसे रिएक्ट करता है। और अगर कभी आपको लगे कि मैंने भी ऐसा फेस देखा है या फिर आई हैव समथिंग मीनिंगफुल टू से अबाउट दिस, देन प्लीज फील फ्री टू शेयर दैट टू, क्योंकि सेफ स्पेस हम सब मिलकर बनाते हैं विद ऑनेस्टी, विद काइंडनेस एंड पूरे दिल से। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे फॉर टुडेज शो डियर मस्ती दिल से। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ और हमारे साथ का साथ यू ही बनाए रखे ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। वी आर साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर।

0: का बाप खत्म खेल हो गया।
1: अरे उल्लू की तुम, तुझे नहीं मालूम? अपने सवाल का जवाब ला, कुछ मत कर, कुछ मत कर, जा जा, जा उसके लिए।

किसी लड़की की बाहों में झूल जा, दो चार दिन बाद उसको भूल जा। ए, और सुन,

0: सिमरन तू आ गई, मैंने तो लग गया तू आना ही नहीं। नाउ चड्डे फट्टे एंड बर्न द डांस फ्लोर।
1: डोंट वरी, आज डांस भी होगा और चांस भी।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: What's NASA? NASA is the one in Punjabi.

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता।
2: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
1: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
2: सोचने दो।
1: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
2: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
1: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
2: तुम मुझे प्यार करते हो।
1: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
2: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
1: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
2: प्यार करते हो ना?
1: पर जरीन, तुम
3: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: रात अकेली है,
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
2: जोश में रहो।
3: यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: Once upon a time in La La Land, सुनो सुनो, हम 33 वर्ष हैं।

मगर रखता हूँ, बोल सकता हूँ जुबा बंद मगर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा क्या, हाँ नाम अब्दुल है।

0: डरता हूँ कहीं नाराज ना हो जाओ।
1: प्यार कुछ जुर्म नहीं है जो डरा करते हो, राज अपनों से छुपाते हो, ये क्या करते हो।

0: X amount of respect due to you.
1: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।

0: 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

बार सूरदास जी हरे कृष्ण धुन गाते गाते एक कुएं में गिर गए। कृष्ण को पुकार लगाई, कृष्ण आ गए और ले चले सूरदास को कुएं से निकाल कर बाहर। सूरदास तो समझ गए थे कि ये और कोई नहीं मेरे कन्हैया हैं, पकड़ लिया हाथ। कृष्ण बोले, अब तो छोड़ दो, मैं तो तुम्हें छुड़ाने आया था बस। सूरदास जी बोले, नहीं, तुम और कोई नहीं मेरे कन्हैया हो। कन्हैया बोले, नहीं सूर, मैं तो बस साधारण ग्रामीण हूं, यहां से गुजर रहा था, तुम्हें गिरे हुए देखा तो निकाल दिया। सूरदास ने कहा, नहीं, मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम ही मेरे कन्हैया हो। और कृष्ण ने हाथ छुड़ाया और भाग गए।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

दिल की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

बार कन्हैया अपने घर में माखन चोरी कर रहे थे और माँ ने देख लिया। बाद में माँ अचानक पूछ बैठी, कन्हैया अपने घर में मिठाई मिश्री दूध दही सब तो है, फिर तू हमेशा माखन चोरी क्यों करता है? और कुछ क्यों नहीं चुराता?

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.

0: आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ गाने का नाम है, यहाँ पर हमें कोई नहीं रोक सकता है। आहिस्ता और हम इम्पॉसिबल। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मस्ती मैडनेस।
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: वैसे आहिस्ता आहिस्ता में भी मजा है, क्या कहती हो रेणुका जी इस बारे में? आपका क्या ख्याल है ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग?
0: 7:06 पे शुरू हो जाती है यार ये तो। कुछ नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहिए भाई। किसी ने ये कहा कि इस शो का नो फिल्टर फोकस है, तो उसको बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया है अंतरा जी ने कि 7:07 हो गए और ये लगी हुई है, शुरू से ही गंदी बातें शुरू हो चुकी हैं। खैर आप लोग तो उठ ही जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ अंतरा जी, तो क्या कहना चाहती हैं आप?
2: हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, मैं तो बहुत सिंपल सी बात कही है, अब किसी और ने किसी और तरीके से ले ली, उसमें मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की क्या ही गलती है। मैं तो मासूम सी एक लड़की हूँ, सुबह सुबह आ गई हूँ काम पे अपने, है ना
0: जी। जी, इनकी मासूमियत पर तंस ना कसते हुए आगे बढ़ेंगे। रेडियो मस्ती 24/7 पर अगला गाना इसी मासूम ने लगाया है आज हमारे इस शो पर। मेरे दीदार को ये आईना भी खुद तरसता है, मेरे महबूब मेरे महबूब। और अगले आगे भी गाने सुनते जाइए आप, क्या क्या लगाए हैं इस इनोसेंट सोल ने। वेल ऑन दैट नोट गाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल फ्राइडे मॉर्निंग। अंतरा जी, आपका वीकेंड कैसा रहा? ये वीकेंड आने वाला कैसा होने वाला है ये बताइए।
2: अगर इतना ही पता होता तो फिर तो मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट होता। बात ही अलग हो जाती।
0: देखा हम कितना उसी मोमेंट में जीने वाले लोग हैं, हमें कुछ नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है आने वाले वीकेंड पर। खैर आप भी अपने वीकेंड के प्लान्स बताइए, फिलहाल के लिए गाना सुनते हैं। विल बी बैक विद द नो फिल्टर न्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम फटी हुई चड्डी। गुड मॉर्निंग।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।

0: हमारे कर्तव्य के आगे कोई नहीं आ सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं, फटे हुए कपड़े भी नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मस्ती मैडनेस।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस।
2: मैं बता रही हूँ, रिसेंटली इन्होंने बोली है बहुत सारी अच्छी वाली हिंदी और तब से लेकर अब तक ना उनके कंटिन्यूएशन में चलता ही हुआ जा रहा है। सो यस, आइए, स्वागत है आपका रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के मस्ती मैडनेस में। मैं हूँ अंतरा और यह रेणु का।
0: तो भाई रेणु का कह के इन्होंने मेरे को न्यूज भुला दी मेरे को। खैर, उस बारे में बात करेंगे, मेरी बहुत सारी हिंदी के बारे में, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर आपको फ्रांस लेके जाना चाहती हूँ। एक 20 साल के फ्रेंच प्रोफेशनल साइक्लिस्ट जिनका नाम है मैक्सिम डी गोम्बले, उन्होंने रेस करी अपनी बिब शॉर्ट्स, जो कि होती है, पहनते हैं ना साइक्लिस्ट जो पहनते हैं वो टाइट वाली शॉर्ट्स जो होती है, बिल्कुल वो वाली है ना। तो भाई अब ऐसा हुआ कि उनका जो बम है शायद जब हिल रहा था अप डाउन और वो रेसिंग हो रही थी पूरी साइकिल पे, तो वो जो बीच में से चीर के वो बम स्प्लिट हो गया। बम मतलब कि उनकी शॉर्ट्स स्प्लिट हो गई। अब क्या है कि कैमरे तो हर जगह होते हैं ना, जब एक नेशनल लेवल की से पूरी पूरी रेस हो रही है तो ऑब्वियसली कैमरेज आगे भी हैं पीछे भी हैं। तो एक कैमरे ने कैप्चर किया कि भाई इनकी तो लिटरली फट गई है। तो फिर उसके Then there was no choice, but this man did not stop. He completed his race, मतलब despite फटे हुए कपड़े, whatever. कर्म के आगे कोई नहीं आ सकता। आज की रात
2: मजा उसका। Boss, अलग लेवल रिस्पेक्ट आ रही है मुझे इस आदमी के लिए यहाँ से। मतलब इट टेक्स अ लॉट टू डिसाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेदर यू वांट टू कंटिन्यू या फिर सिलनी है।
0: हाँ, एंड ज्यादा कंफर्टेबल हो गया होगा राइट, क्योंकि सोच थोड़ी लूज हो गई शॉर्ट्स, तो कितने मजे से झूल झूल के चला रहा होगा।
2: आई हैव अ क्वेश्चन ऑन द कंफर्ट, क्योंकि वो जो रेसिंग वाली साइकिल्स की सीट्स होती है ना वो बड़ी नैरो सी होती है।
0: टेल मी अबाउट इट। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली खबर के साथ में। जस्ट अ मिनट, गुड मॉर्निंग।
3: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।

0: song that they do.
1: Make your feelings strong.
2: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
3: Check it out.
4: गुड मॉर्निंग। यहाँ पर बहुत ही शांति है इस समय और बहुत बढ़िया लग रहा है। एयरकॉन को बंद कर दिया गया है। थोड़ा सा मौसम यहाँ पर अब गर्म लग रहा है, लेकिन अंतरा जी टोटली एक्साइटेड लग रही हैं अपनी अगली खबर लेके। तो चलिए देखते हैं क्या लाई है।
5: दुनिया क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
6: जब गर्मी लगी रही है तो मैंने सोचा कि स्टूडियो का टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। की ही बात की जाए, बट उससे पहले मुझे एक बात बताइए रेणुका, कि जब आप अगर किसी के फैन है फॉर एग्जाम्पल
4: जी,
6: तो उस फैन की कोई भी पोजीशन अपने पास रखने के लिए आप किस लेवल तक, मतलब उसका यूज्ड हैंकी अगर कहीं गिर जाए विल यू कीप इट विद यू?
4: नहीं, मैंने कई बार अपने शो पर ये बात कही है कि कॉकटेल के बाद वो दीपिका पादुकोण की के कपड़े आए थे हमारे पास, हमारे पिछले स्टूडियो में 3 घंटे वाले शो पे, और हम लोग उनको दे रहे थे अपने लिसनर्स को। सो आई लुक्ड एट देम एंड आई सेड व्हाट कैन बी द क्रेज, एंड दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो फ्रॉम आवर देन जॉक, यू नो, हु सेड कि भाई ये तो पागलपन होता है इन चीज़ों के पीछे, और मैं देख रही हूँ कपड़े चीथड़े से लग रहे थे, क्या करोगे तुम इसको ले जाके, यू नो, बट दैट्स माई एटीट्यूड टूवर्ड्स दीज थिंग्स। तुम क्या अंडरवेयर की बात कर रहे हो?
6: That big a fan to do something
4: never
6: like that, right?
4: No.
6: But there are people, that is right, जो इस तरह की चीजें करते हैं। So Drake का नाम सुना होगा, जो music से थोड़ा सा connected रहते हैं, तो उन्होंने Drake का नाम जरूर सुना होगा। तो he has purchased apparently auction में, ठीक है, Michael Jackson की used underwear।
4: पूछो
6: कितने में?
4: कितने
6: yes.
4: में? कितने में?
6: $3,65,000.
4: Are you kidding me? यहाँ पे लहंगे की बात हो रही है, महंगे लहंगे की बात हो रही है, वहां चड्डिया खरीदी जा रही है वो भी 3.5-4 लाख $ में, और वो भी यूज्ड अंडरवेयर। मैं कहती हूँ धुला भी हो तो वो भी चलो समझ में आता है, तो वो सूंघता उसको करता क्या है? आई मीन टू मच।
6: दो चीज है, ये भी तो पता नहीं है ना कि हाउ टू प्रूफ, मतलब
4: हाँ,
6: कि उसी का यूज है, ये हाँ, भी तो है ना,
4: ये भी बात है, पता नहीं भाई। फैन है, अंधे फैन फैंस होते हैं, जो भी होते हैं क्या ही कहेंगे। ऑन रेडियो मस्ती 24/7, व्हाट्स योर प्राइस्ड पोजेशन फ्रॉम अ फैन, जरूर बताइएगा। और वो माइकल जैक्सन अंडरवेयर धोता क्यों नहीं था पहले ये बता।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: शादी करते टाइम हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट टू डाइवर्ज ऑल द सीक्रेट्स एंड एनी बीमारीज दैट यू नो ईदर ऑफ द पार्टनर्स हैज और हैज द पोटेंशियल टू हैव. मतलब कितना जरूरी होता है सच बोलना शादी के टाइम पर. ऑन रेडियो मसी 24/7 थोड़ा सी संजीदा खबर इस समय.
2: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है.
3: ऐसा नहीं लग रहा है कि आजकल आप कोई भी ऐसे सवाल पूछता है तो मैं ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आ जाता है जी हाँ मस्ती शादी के लिए. लाइक इट हैज स्टार्टेड हैपनिंग टू मी. एनीबडी टॉक्स टू मी अबाउट एनी प्रॉब्लम लाइक डियर मस्ती.
1: But Antra, we can make fun of that show as much as we want because हमारे दिमाग में 24 घंटे ये चलता है. लेकिन
3: I'm saying that I am so involved into it that whenever now anybody talks to me about any issue, I am like कि तुम उस शो में क्यों नहीं पूछते.
1: And you're right. And you're right because मेरे हाल ही में एक दोस्त के साथ में कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही है. किसी ने उसकी कोई शिकायत लगा दी इधर उधर गवर्नमेंट में तो वो परेशानी में है और यू नो वाज टॉकिंग टू मी एंड आई वाज थिंकिंग डियर मस्ती. मतलब ये तो डियर मस्ती वाला क्वेश्चन है. यू सो राइट. हाँ तो डियर मस्ती जैसा ही ये सवाल है कि भाई कितना जरूरी है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की खबर है. वहां पर क्या हुआ कि एक 25 साल का जो ग्रूम था राइट शादी हो रही है आप ये सोचो तो सडनली वो अपना बैलेंस लूज करता है एंड ही फॉल्स फ्रॉम द चेयर ड्यूरिंग द रिचुअल्स. ओके अच्छा भाई कई लोग सोचेंगे ठीक है हो सकता है ही इज यू नो ही इज कंज्यूम्ड सम स्टफ व्हिच इज शादी पे खुशी में यू नो इसलिए गिर गया लॉस्ट हिज बैलेंस और व्हाटएवर. लेकिन उसके बाद क्या हुआ बड़े सारे रिलेटिव्स ने ये भी नोट किया कि उसको काफी परेशानी हो रही थी पूरे के पूरे टाइम एंड फिर समझ में आया कि ये इंटेंशनली छुपा रहा है क्रॉनिक स्पाइनल डिसऑर्डर. मतलब ही इज नॉट stable to sit, he cannot walk properly and all that. So the bride stepped up and she said, I am sorry, medical report chahiye, mereko is time shaadi nahi karni. You know, and usme bhi it takes a lot of guts, right? And then, of course, the police and everything and the shaadi was called out because waqai us bande mein problem thi. To kitna zaruri hota hai na yaar sach bolna, matlab kya hai ye? Jhoot kyun bol rahe ho? Hai?
3: That is true. एक बार बोल के फिर देख लो ना whether someone wants to stay with you or just kind of leave you.
1: हाँ exactly because
3: transparency में मतलब uncomfortable है but बहुत sorted रहता है सामान.
1: बिल्कुल सही बात है. मेरा एक दोस्त होता था बहुत जमाने पहले उसका बहुत बड़ा होता था वो आदमी मतलब मेरे उम्र के हिसाब से and he went and got his engagement done with a wig. And he was bald, right? तो हम सोचते थे अभी हम क्या करें? Because suddenly you become an accomplice to a, you know, crime which is about to happen. But anyway, on Radio Musti, guys, serious बात है सच बोलना सीख लो यार नहीं तो पूरी जिंदगी लड़ोगे मरोगे और फिर क्या divorce होएगा पैसे बांटने पड़ेंगे all the mess. क्यों करना है?
3: Yeah.
1: है ना?

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: मजे ही आ गए मुझे तो. मतलब ये जो तरीका निकाला है ना, मुझे बहुत ही ज्यादा फन और क्रिएटिव लगा.
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
2: रेडियो मस्ती 24/7 पर मजे सिर्फ हमें ही नहीं आपको भी आ रहे हैं, ये हमें आपके मैसेजेस से पता लग रहा है यहाँ पर. तो भाई इस घंटे के एंड में लग रहा है अंतरा जी कुछ खास खबर लेकर आई, क्योंकि इसकी ना हाथ में चाय वाय सब सीधी होगी, इसकी एक्साइटमेंट देखो शक्ल पे.
0: अरे बड़ा ही कूल सा तरीका निकाला. तो ये जो है हमारे प्रोफेशनल एक रेसलर हैं, तो उन्होंने शादी की, ठीक है, साउथ वेस्ट चाइना में कहीं पर.
2: हाँ.
0: तो अब मियां बीवी ने मिलकर कैसे एक एक एक चीज निकाला कि भाई कौन घर का काम करेगा, ये कौन कैसे डिसाइड हो. ठीक है, सो दे actually hosted a wrestling match. Wife was allowed to decide to कि जिसके दोनों में से किसी के ऊपर भी दाव लगा. अगर तो तू जीती,
2: हाँ,
0: तो फिर मैं करूँगा household work for the rest of the life.
2: Okay.
0: I mean, क्या मजेदार. मतलब ठीक है, जब आप when you get into these things, you find it so funny as well as creative at the same time. देखिए मतलब wrestling का match अगर वो जीत गई तो सारे जिंदगी के लिए sorted एकदम वहीं पे मामला.
2: यार एक बात बता, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि देखो जहाँ भी physical strength की बात है वहाँ biologically औरतों में थोड़ी सी कम होती है as compared to men, right? So ये तो शुरू से ही rigged है.
0: This is not between the husband and the wife.
2: Oh.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: लड़की और एक लड़का जब दोनों स्कूल जाते हैं तो दोनों का रिएक्शन, दोनों का सेलिब्रेशन, दोनों के दुख कितने अलग होते हैं ना अंतरा. मतलब ऑन रेडियो मस्ती 24/7 आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन माय क्लासमेट्स जो लड़के थे. उनको कितनी बार, मोस्ट ऑफ देम डिडंट क्वाइट गिव अ डैम अबाउट उनके कितने नंबर आ रहे हैं. राइट,
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो.
0: एक तो होता था वॉशिंग पाउडर निर्मा, ऐसे करके टेबल पे शुरू खड़ा हो जाता था अपनी शॉर्ट्स को एक साइड से ऊपर करके. यू नो, रिमेंबर द गर्ल हु यूज्ड टू कम इन द एड एंड ऑल दैट. सो दे वर लाइक कॉमिक्स, यू नो. और लड़कियां कितनी सीरियस होती थी मोस्टली पढ़ाई में, ऐसा तुमको लगता है?
2: हाँ जी, हाँ जी, मेरे को तो यही डिफ्रेंसिएशन का रिबेल जो है मुझे बहुत पहले आ चुका था कि ये इतना कॉन्फिडेंस कब आएगा हमारे अंदर कि हम स्ट्रेस फ्री होकर, ऐसे स्ट्रेस फ्री होकर घूमना.
0: हाँ.
2: मतलब इनके लाइफ में तो कोई चिंता ही नहीं है.
0: बिल्कुल.
2: हम रोज जाके मार खा रहे हैं, मर रहे हैं, कुट रहे हैं कि मार्क्स लाने.
0: और फिर मतलब अभी हाल ही में जब रिजल्ट आया ये बोर्ड एग्जाम्स वगैरह का इंडिया में, राइट, तो दो अलग अलग रिएक्शंस नोट किए गए हैं. इट्स अ वेरी क्यूट वीडियो दैट यू नो आई एम हैप्पी टू शेयर ऑन द सोशल मीडिया. तो क्या हुआ कि एक लड़की 90% मार्क्स लाई थी और वो रो रही थी. मतलब उसकी माँ उसको समझा रही है, इट्स ओके बेटा, सब ठीक है. और सामने से उसी के बैकग्राउंड में उसका एक क्लासमेट जिसके 60% आए थे लड़के के, वो